क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड पथरियां फेंकते थे तो उसने

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yuya Granular. Mittiye jo ma.
7: Is sube ko chhatte ke aur sim ke logo ne. पाकिस्तान बनाया पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी हाउस ने पास की तो मेहरबानी करके किसी के अगर खाम ख्याल में कुछ है तो वो निकाले कोई कोर्ट के फैसला नहीं कर सकती कोई जलसे में बैठ के तकरीर करके ये फैसला नहीं कर सकता कोई टीवी में बैठ के सेमिनार करा के ये फैसला नहीं कर सकता फैसला इस हाउस में होगा डिबेट इस हाउस में होगी फैसला ये हाउस करेगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा कि जो बाकी आवाजें चल रही है ना उनके सब मुंह बंद करेंगे हम इंशाल्लाह क्या तालियां कि ये सूबा हमेशा एक रहेगा सिंध हमेशा एक रहेगा सिंध
8: सिंध असेंबली जे आम इजलास में नवन सूबनि इल्ज़ाम यूनस बाबति रिख़्त बहस वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त अंग्रेज़ बि सिंध जो विरहाङो न करे सघिया वॾनि वॾनि तो माण्हू हो चयो आहे नवनि सूबनि जो बहस छॾे छॾियो पर सभिनी जो मुंहुं बंदि कराइण जो वाहिद हल असेंबली में बहस कराइण आहे सिंध बाबति फ़ैसिलो का अदालत न कंदी न ई पिंडी में थींदड़ सेमिनारनि या जलसनि जुलूसनि में फ़ैसिलो थींदो जेसी ताईं असां मां हिकु भेण पीउ ज़िंदा आहे सिंध जो विरहाङो न थींदो सिंध हिकु आहे हिकु रहंदी कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरहाङो न थींदो सिंध असेंबली जे इजलास में उहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरहाङो कॾहिं बि न थींदो वॼायो ताड़ियूं ई सिंध हमेशह रहंदी
7: कोई सामने हो या पर्दे के पीछे हो ये 50 सालों से खेल रहे हैं पाकिस्तान की धरती के साथ कि बलूचिस्तान के हालात को देख रहा है इसे कहां पहुंच गई क्या तुम फिर चाहते हो कि सिंध भी इस हालात में आ जाए और तोड़ोगे कितना तोड़ोगे क्या तोड़ के करोगे क्या मिलेगा कि है तो सिंध एक है नहीं तो कुछ नहीं कि तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो हम लोग मोहब्बत वाले हैं तुम खंजर क्यों लहराते तुम्हारे वजूद है हम ये कैसे मान सकते हैं कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि हमारा बाजू अलग हो जाए टांग अलग हो जाए सिर अलग

0: मौजूद आहे त सिंध विराजी न सघंदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो त पंहिंजनि अकाउंट खे जो ख़ुशि करण लाइ सिंध जे विरहांगे जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि। फार्म 47 ते अचण वारनि खे इख़लाक़ी तौर अहिड़ी ॻाल्हि करण बि न घुर्जे। खुरम किरियो चयो सुमरो चयो त ख़बर पइजी वेंदी त सिंध जो हिलाले पुट केरु आहे। असां गोलियूं खाइण लाइ तयार आहियूं पर पंहिंजी माउ सिंध खे विरहाइण न ॾींदासीं। नजम आलम चयो त मोहसन नकवी केरु थींदो आहे। सिंध जे विर्छ कराइण वारो इस्लामाबाद खे पैगाम ॾियणो आहे त सिंध हिकु आहे। हिकु रहंदे दुनिया जे का बि ताक़त हुन खे विराए न थी सघे।
1: आज कहीं से कोई भी आवाज अगर सूबों की उठ रही है या इंतजामी यूनिट के हवाले से उठ रही है।

0: एक रहेगा, मैं मुराद अली शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंतजामी यूनिट बनाने से सिंध मजबूत होगा।
1: मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब इस सिंध में शहर हो सकते, डिस्ट्रिक्ट हो सकते, डिवीजन हो सकते, तो इस सिंध में इंतजामी यूनिट क्यों नहीं हो सकते? इतनी फिक्र है सिंध की, इतनी फिक्र है, 22,000 अरब रुपए 18 साल में खा गए।
2: सिंध असेंबली में नव सुबह बाबत मामूली रिथ पेश करते एम क्यू एम मेंबर निसार खोड़ो जा थोड़ा मना शारिक जमाल चयो त असीं सिंध जे ख़िलाफ़ न आहियूं, सिंध जो हिकु इंच बेडा ओडा न थींदो, पर हिकिड़ो दलील आहे त इंसामी यूनिट साइणी न ॾींदासीं। असांजी धरती माओ पाकिस्तान आहे, सिंध जे माण्हुनि खे सुठी हुकुमाने घुर्जे थी त असांजो साथ ॾियनि। रेहान अकरम चयो त नमन सुबनि बाबति मामूली रिथ अचण सां असांखे पंहिंजो मौक़ो पेश करण जो मौको मिलियो आहे। शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 में आयन में नवनि सूबनि जे क़याम जो तरीक़ेकार वाज़े कयो। भुट्टो खे ख़बर हुई त मुस्तक़बिल में नवनि सूबनि जी ज़रूरत पहुची सघे थी। आदिल अस्करी चयो त सिंध जे विरहाङे बाबति क़रारदाद आरण बदिरां पंहिंजे गवर्नर्स ठीकु कयो, सिंध साउथ ऐं सिंध वेस्ट जहिड़ा सूबा ठही सघनि था। हिकु वज़ीर तालीम निज़ाम न हलाए सघे त पोइ 5 वज़ीर हुजणु घुर्जनि। आमिर सिद्दीकी चयो त को बि नथो चाहे त सिंध विरहाइजे, पर अवाम जा मसला हल न आहिनि कया, आम सिंधी माण्हू हालति कड़ी आहे, पंहिंजा मल ठाहे छॾिया अथऊं।

0: मका दिफ़ाई मुआहदे खे इदार ते शिकिल ॾियण ऐं मुस्तक़िल सेक्रेटरेट क़ाइम करण ते इतफ़ाक़। सरबराह पाकिस्तान हवाले, सेक्रेटरेट जो पहिरियों सरबराह 8 सालनि लाइ पाकिस्तान मां मुक़ररु कयो वेंदो। इस्तांबुल में मुआहदे तहत क़ाइम मिनिस्टर जे सियासी ऐं दिफ़ाई कमेटी जो पहिरियों इजलास। टिनी मुल्कनि विच में सियासी दिफ़ाई स्ट्रेटजिक सहकार खे वधीक मंज़ूम बणाइण, कयल राब्तनि खे मज़बूत करण, इलाइक़े सलामती बाबति मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ गॾियल कोशिशुनि खे वधीक असराइतो बणाइण बि एजेंडा में शामिल। इजलास खे पोइ मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हाकान फिदान चयो त इजलास जो मक़सदु इलाइक़े अमून ऐं इस्तेहकाम खे हथी ॾियण आहे। इजलास में कयल फ़ैसिला नतीजा ॾींदड़ साबित थींदा। खिते में अमुन क़ाइम करण लाइ समूरनि इलाइक़ाई मुल्कनि खे गॾिजी क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। मुआहदे खे बाज़ाबता तौर मक़ाम मुआहदे जो नालो ॾियण ते इतफ़ाक़। मुआहिदो नेटो जे पौराउ करे थो। ॿियनि मुल्कनि लाइ बि मुक़ररु शर्तुनि तहत मुआहिदे में शामिल थियण जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। तुर्किया में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जूं मुलाक़ातूं। पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब जे बचाउ वारे वज़ीर शहज़ादे ख़ालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद, तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हाकान फिदान सां मुलाक़ात। तुर्किया जे क़ौमी दिफ़ाई वारे वज़ीर अशार गुलर ऐं तुर्क जनरल स्टाफ जे सरबराह जनरल सां बि फील्ड मार्शल जूं मुलाक़ातूं। मुलाक़ातुनि दौरान गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि बतरफ़ी दिफ़ाई सहकार ऐं इलाइक़ाई सलामती जी सूरताल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ISPR मूजिबि आर्मी चीफ जूं मुलाक़ातूं टिनी मुल्कनि विच में भाईचारे जी मज़बूत लाॻापन ऐं वधण दिफ़ाई सहकार जी अकासी कनि थियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
5: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فكذبوا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔

0: चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa, Aamdani Mein Izafa, Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की अफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
4: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली
3: आवाज की डोर से बंधा हुआ
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez Aaram, Muasir Hifazat, aur Kable Aitmad Mayar.
3: Har achhe store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular. Mitiye jo.
8: सिंध असेंबली जे आम इजलास में नवनि सूबनि इल्ज़ामी यूनिट बाबति रिथ ते बहस वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त अंग्रेज़ बि सिंध जो विरहाङो न करे सघिया। वॾनि वॾनि तो माण्हू हो चयो अबनि जो बहस छॾे छॾियो पर सभिनी जो मुंहुं बंदि कराइण जो वाइद हल असेंबली में बहस कराइण आहे। सिंध बाबति फ़ैसिलो का अदालत न कंदी न ई पिंडी में थींदड़ सेमिनारनि या जलसनि जुलूसनि में फ़ैसिलो थींदो। जेसी ताईं असां मां हिकु बि एम पी ए ज़िंदा आहे सिंध जो विरहाङो न थींदो। सिंध हिकु आहे हिकु रहंदी। कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरहाङो न थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में उहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरहाङो कॾहिं बि न थींदो। वॼायो ताड़ियूं ही सिंध हमेशह रहंदी।
9: कोई सामने हो या पर्दे के पीछे हो, ये 50 सालों से खेल रहे पाकिस्तान की धरती के साथ कि बलूचिस्तान के हालात को देख रहा है कि कहां पहुंच गई। क्या तुम फिर चाहते हो कि सिंध भी इस हालात में आ जाए? और तोड़ोगे? कितना तोड़ोगे? क्या तोड़ के करोगे? क्या मिलेगा? कि है तो सिंध एक है, नहीं तो कुछ नहीं।
10: कि तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते? तुम्हारे वजूद है, अब ये कैसे मांग सकते हैं, कैसे तकलीफ कर सकते हैं कि हमारा बाजू अलग हो जाए, टांग अलग हो जाए, सिर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए? ऐसा कतन नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि सिंध की तकसीम की बात हो।
8: सिंध असेंबली में रिथ पेश करण जो मकसद सिंध जे अवाम खे सूरत हाल खां आगाह करण आहे। सिंध जी अवाम पंहिंजो रद अमल ॾेई छॾियो आहे। सोशल मीडिया हुन जो गवाह आहे जिन खे हिन धरती पनाह ॾिनी उहे मादरे वतन ऐं माउ जा टुकड़ा करण जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध जे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंदा। पीपुल्स पार्टी एम पी ए निसार खोड़ो जो सिंध असेंबली में ख़िताब। पी पी मेंबर राजा रज़ाक बलोच चयो त सिंध असांजो वजूद आहे, पंहिंजे वजूद जी विरासत कीअं था

0: मुराद अली शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंतजामी यूनिट बनाने से सिंध मजबूत होगा।
1: मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब इस सिंध में शहर हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, तो इस सिंध में इंतजामी यूनिट क्यों नहीं हो सकते? इतनी फिक्र है सिंध की, इतनी फिक्र है। 22,000 अरब रुपए 18 साल में खा गए।
2: सिंध असेंबली में नव सुबन बाबत मामूली रिथ पेश करण ते MQM मेंबर निसार खोड़ो जा थोरा मञा। शारिक जमाल चयो त असीं सिंध जे खिलाफ न आहियूं, सिंध जो हिकु इंच बेडा ओडा न थींदो, पर हिकिड़ो दलील आहे त इंसामी यूनिट ठाहिणी न ॾींदासीं। असांजी धरती माउ पाकिस्तान आहे, सिंध जे माण्हुनि खे सुठी हुकुमानी घुर्जे थी त असांजो साथ ॾियनि। रेहान अकरम चयो त नमन सुबन बाबति मामूली रिथ अचण सां असांखे पंहिंजो मौक़ो पेश करण जो मौको मिलियो आहे। शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 में आयन में नवनि सूबनि जे क़याम जो तरीक़ेकार वाज़े कयो। भुट्टो खे ख़बर हुई त मुस्तक़बिल में नवनि सूबनि जी ज़रूरत पहुची सघे थी। आदिल अस्करी चयो त सिंध जे विरांगे बाबति क़रारदाद आरण बदिरां पंहिंजे गवर्नर्स ठीक कयो, सिंध साउथ ऐं सिंध वेस्ट जहिड़ा सूबा ठही सघनि था। हिकु वज़ीर तालीम निज़ाम न हलाए सघे त पोइ 5 वज़ीर हुजण घुर्जनि। आमिर सिद्दीकी चयो त को बि नथो चाहे त सिंध विरहाइजे, पर अवाम जा मसला हल न आहिनि कया। आम सिंधी माण्हू हालत कड़ी आहे, पंहिंजा मल ठाहे छॾिया अथव।

मका दिफ़ाई मुआहिदे क्रिकेट जो पहिरियों सरबराह 8 सालनि लाइ पाकिस्तान मां सिहत क़ाइम मज़बूत करण लाइ सलामत ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ गॾियल कोशिशुनि खे

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़, आवाज़
1: जी
3: हरी, सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मेहनत होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
4: अब आप सुनेंगे
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर.
6: कदम खणण जी ज़रूरत आहे. ॿियनि मुल्कनि लाइ बि मुक़रर शर्तनि तहत मुआदे में शामिल थियण जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि.
7: तुर्किया में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जूं मुलाक़ातूं

0: पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में दिफ़ाही सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब जे बचाउ वारे वज़ीर शहज़ादे ख़ालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीर हाकान सां मुलाक़ात। तुर्किया जे क़ौमी दिफ़ा वारे वज़ीर ऐं तुर्क जनरल स्टाफ जे सरबराह जनरल सां बि फील्ड मार्शल जूं मुलाक़ातूं। मुलाक़ातनि दौरान गडि॒यल दिलचस्पी जे मामलनि ते बेतरफ़ी दिफ़ाई सहकार ऐं इलाक़ाई सलामती जी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई। ISPR मूजिब आर्मी चीफ जूं मुलाक़ातूं टिन्ही मुल्कनि विच में भाईचारे जे मज़बूत लाॻापन ऐं वधंदड़ दिफ़ाई सहकार जी अकासी कनि थियूं।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं ईरान थियल बेतरफ़न लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण ऐं मज़बूत बणाइण जो बि अज़म। इजलास में ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकी ऐं चीनी परडे॒ही वज़ीर बि विच में मुलाक़ात थी।
0: मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी में तेज़ बरसाति रोड रस्ता तलाउ जो ॾेख ॾियण लॻा। E11 नालो भरजण सबब पाणी आबादी में दाख़िल। ली नाले में बि ख़तरनाक हद ताईं वाध। स्कूलनि में मोकल जो ऐलान। ज़िले इंतिज़ामिया जो चवण आहे त रावलपिंडी में मजमूई तौर 190 मिलीमीटर बरसाति रिकार्ड कई वई। नालाली में कटियारिया वटि पाणी जी सतह 29 फुटनि खां वधी वई। गवालामुंडी पुल ते पाणीअ जी सतह 24 फुटनि ताईं पहुची वई।

0: अड़ भरसां चांडिया बिरादरी जे बिंदरन में पुराणे तकरार तां जेड़ो नौजवान कतल टे ॼणा जख़्मी ॻोठ हासिल खोसो में चांडिया बिरादरी जे बिंदरन में हलंदड़ पुराणे तकरार तां जेड़ो थी पियो। फायरिंग में 35 वरनि जो सजाद वरद बख्शल चांडियो कतल बि दुर्जा इम्तियाज़ चांडियो वाहिद बख्श ऐं गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो लठियूं लॻण सबबि ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:15 AM.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अपना शहर, अपना घर, मटियारी, और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6।

तो मेरी आवाज जिन गलियों शहरों शहर शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे अहलन वसहलन मरहबा जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह बोंजोर शाओनी हाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि हम मुझसे करना चाहते हैं वो सब करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे इंजॉय करेंगे आगे चलेंगे स्टे ट्यून्ड।

0: It's 11.
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
0: इट्स 11:30 एएम। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ब्यूटी क्रीम।
3: लाया है NPS।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

जलाने वाला गाना, और जलाने वाले गाने के बाद हम प्ले करेंगे नेक्स्ट सॉन्ग जो के मुझे सुना दिया था कॉलर ने, तो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मुझे कहते हैं आज रखता है आपका मेरे साथ पूरे एक बजे तक का, और आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो हेलो, ओ ओ कॉल ड्रॉप होगी। 03000113488 के ऊपर एक और कॉलर, हेलो
4: जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, रशीद अहमद कैसे, ठीक ठाक, फ्रॉम भावलनगर
4: जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपको सलामत रखे।
3: थैंक यू।
4: तो इतने ज्यादा रश में, इतने ज्यादा कॉलर, इतने ज्यादा लोग आपको प्रोग्राम सुनने वाले, कॉल करने वाले, और आप आवाज की पहचान और फिर मेरे शहर का नाम लेना यकीन जानिए मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एजाज है।
3: अच्छा चले ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच रशीद अहमद को ये अच्छा सा गाना।
4: कभी तो तुमको याद आएंगे वो बहारें वो तमाम, चुके चुके बादलों के बीच मिले थे हम तुम जहां जहां। ये इखला के मत की आवाज में,
3: किसकी आवाज में?
4: इखलाक अहमद की आवाज में,
3: अहमद रुश्दी की आवाज में नहीं,
4: मेरे ख्याल में शायद इखलाक अहमद, देख ले, चेक कर ले।
3: नहीं, असल में ये अहमद रुश्दी का सॉन्ग है।
4: अच्छा अच्छा, ठीक है
3: ठीक है। और कुछ कहेंगे
4: जी? तो माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई फराज भी आप तो सुन रहे, जमान भाई है, अजीबुल्ला।

0: और ये अपना ताहिर लुंड और उनके बादशाह भी सुन रहे हैं आपको।
1: ओके, सबको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में।
0: जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबको सलाम कहूँगा और आपके लिए खूबसूरत दुआ कि अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
1: थैंक यू सो मच जी। और ये रहा गाना।

0: प्यार।
1: ओके जी नेक्स्ट कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कौन कहाँ से? मोहम्मद नवाज बल्दी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ओके, प्रोग्राम सुनते हैं, गाना वाना सुनाएंगे
2: जी? क्यों नहीं सुनाएंगे, जो आप कहेंगे वही सुनाएंगे।
1: ओके सुना दें।
2: उर्दू है आसिम जी?
1: जी
2: उर्दू नहीं है आसिम जी,
1: जो आपका दिल करे।
2: चलो ठीक है, तो उर्दू कर दीजिए।
1: ओके सुना दें।
2: बोलो बोलो मेरा तुझे दिल आ गया, जीने का मजा आ गया आ गया आ गया। सुनो सुनो उर्दू मूवी है, गीता शायद जाके हर मिली।
1: चलें ठीक है, मैं बिल्कुल सर्च करती हूँ उसको, हम चलाते हैं जी। थैंक यू सो मच, और कुछ कहेंगे? ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। एंड हियर कम्स द सॉन्ग।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: काबीना ए ऑफिस ए काबीना के इदारे की शक्ल देने की मंजूरी दई छी। ए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस भी 1,000 रुपया मुकर्र। वे वजीर सैद मुराद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना का इजलास। सैद मुराद अली शाह है ई ऑफिस वे निजाम के शुरुआती तौर 10 खातन से लागू कर दी।
2: तुर्किया इसराइली वजीर आजम के दुनिया लाए खतरो करार दई छो। तुर्किया के परदेही वजीर हाकान फिदान है गजा में नसल कशी करण बाद इसराइली वजीर आजम इंसानियत जो दुश्मन बण चुको है। आलमी बिरादरी नेतन यायो जो पॉलिसी रोकने लाए हंगामी बुनियादन से कदम खणे।
1: मेयर भरसा चांडिया बिरादरी के बिन धुरी में पुराने तकरार का झेड़ो। नौजवान कतल 3 जणा जख्मी। गोठ हासिल खोसो में चांडिया बिरादरी के बिन धुरी में हलंदड़ पुराने तकरार का झेड़ो थो। फायरिंग में 35 वरन जो सजाद वालिद बख्शर चांडियो कतल। बे दूजा इम्तियाज चांडियो वाहिद बख्श चांडियो ए गुलाम मुस्तफा चांडियो लठ लगने सबब सख्त जख्मी।
2: उडेरो लाल के गोठ हाजी जान मोहम्मद हिंगोरो में उस्ताद के खोट खिलाफ गोठाणन ए शागिर्दन जो एतजाजी मुजाहरो। गोठाणन जो चवण है 150 शागिर्दन लाए सिर्फ एक उस्ताद है। उस्ताद की खोट सबब शागिर्दन की तालीम मुतासिर थी रही है। उस्ताद मुकरर करे परेशानी खत्म कई वे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज।

ओके जी, एक गाना प्ले करते हैं और इस गाने के साथ आप लोगों की कॉल्स को एंटरटेन करेंगे और एंटरटेन करने के साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर भी बताएंगे. सो हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग. और कहाँ गया सॉन्ग, ये रहा सॉन्ग.

ओके, आज का टंग ट्विस्टर है कि टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता और तोते की चोंच टूटी, ठीक है, ये कहेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आज का टंग ट्विस्टर कौन कह पाता है। टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी। 0300001314888 और जो लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं उन लोगों के मैसेजेस को भी साथ साथ इंटरटेन करते हैं। और हमें मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम, शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद, और जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और इसके अलावा शहजाद अली रिंद, कौन है, जहरा

और इसके अलावा शरीफ कौन जरा आपका शो सुन रही है, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि खुशबू लगा रहे की आवाज में कोई गाना सुनाओ, अभी सुनाते हैं जी, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा सब्र, ये सब कुछ करके हम आपको गाना सुनाएंगे। नाइस प्रोग्राम। नेक्स्ट मैसेज में मुझे सिर्फ इतना ही रिसीव हुआ है, थैंक यू सो मच। सफदर बलोच हमारे साथ मौजूद है, शेर लिखते हैं, लफ्जों के तीर से यूं ना मारा करो ए जालिम, कुछ तो रहम खाया करो, नाजुक दिल है शीशे का।

थैंक यू सो मच. और आज काफी दिन बाद आपका शेर मुकम्मल पहुंचा है मुझ तक. इसके अलावा जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, खुदा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. थैंक यू सो मच सफदर बलोच. और इसके अलावा गुड मॉर्निंग, हाई रुखसार, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, प्लीज प्ले सॉन्ग पिरी मो पिरी. दिस इज अल्ताफ गरीब बलोच फ्रॉम कराची.

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर रिसीव करेंगे और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: क्या हाल है दाजी?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: मैं रोड़ी से बात कर रहा हूँ.
0: रोड़ी से बात कर रहे हैं? रोड़ी से कौन?
1: मीरानी.
0: मीरानी बात कर रहे हैं. ओके, प्रोग्राम सुनते हैं. कौन सा प्रोग्राम है?
1: मस्ती वाला चिल.
0: नहीं, मस्ती वाला चिल नहीं है, सॉरी. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. 0000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. ठीक है, तो कॉल कीजिए. नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: बाजी, मैं आपका
0: ओके. अच्छा, मुझे बताएं, प्रोग्राम सुनते हैं?
2: जी बाजी, आपको खुद मालूम होगा कि हम आपके लिसनर हैं, पुराने लिसनर हैं, न्यू लिसनर हैं.
0: पुराने लिसनर हैं, न्यू लिसनर नहीं है. ठीक है, प्रोग्राम सुनते हैं.
2: बाजी, टाइम मिलता है तो सुनते हैं, लेकिन मसरूफ साथी बहुत खुशी होती है ना. आज जो है ना, मसरूफ नहीं था, टाइम मिला तो आप तक सुन रहा था. अच्छा,
0: मतलब आज सुन रहे हैं ना?
2: जी जी हाँ.
0: तो टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे?
2: जी बाजी, आपको तो मालूम है हम इस बात में वीक हैं, कमजोर हैं, और बड़े मुश्किल टंग ट्विस्टर आते हैं इस वजह से हम तो. लेकिन ऐसा तो प्रोग्राम में हासिल करते हैं.
0: चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच. फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें. 0300001348

0: एक और कॉलर चेक करेंगे. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मोहम्मद हनीफ है.
0: मोहम्मद हनीफ प्रोग्राम सुन रहे हैं टंग ट्विस्टर बोलेंगे?
1: प्रोग्राम सुन रहा हूँ.
0: तो टंग ट्विस्टर बोलेंगे?
1: बताओ.
0: आपने कहना है टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी.
1: क्या बोला था?
0: टूटी चोंच का. चलें फिर, अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अच्छा वही

0: It's 12:30 p.m. This soundtrack is brought to you by
1: Agar Khudsa.
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो
0: इट्स 12:30 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो ले।

0: साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स जो कि मुझे रिसीव हो चुके हैं जी, और कॉमेंट्स हमें कर दिए हैं नजीर खोसो ने बहुत सारे, और लिखते हैं कि दुनिया में कोई काम ना अच्छा है और ना बुरा है, बल्कि इंसान की नीयत अच्छी होती है या बुरी होती है। बंदा अगर बद हो जाए तो काम बद हो जाते हैं, और बंदा अगर नेक हो तो वही काम नेक बन जाते हैं। वाओ,
1: रास आ गया नंगे पैर फिर दी नुजोग रास आ गया।
0: नजीर खोसो, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा 0300001314888 के ऊपर आप लोगों की कॉल्स लेंगे हम, और साथ में हम गाना चेंज करेंगे, और मेरे ख्याल से हम गाना प्ले करेंगे, मैशअप सॉन्ग प्ले करते हैं जी, मैशअप सॉन्ग सुनते हैं, एंड मैशअप सॉन्ग के साथ ही हम आगे चलते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: Hello.
1: हेलो, ओके जी, हेलो. आवाज नहीं आ रही है, हमें चेक करेंगे कि क्यों नहीं आ रही है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? अली रजा कहाँ से बात कर रहे हैं? सखर से बात कर रहे हैं. ओके, पहली दफा कॉल की है. अच्छा, मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे? हेलो, नहीं सुना?
2: जी
1: टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे?
2: नथिंग
1: ओके, मुझे आपकी आवाज कुछ समझ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन आ रहा है और भाई है भी कंफ्यूज.

0: घर से आने में देर लग गई।
1: बिल्कुल देर लगी
0: है ना। तो टंग ट्विस्टर सुना है, बोलोगी?
1: अच्छा, टंग ट्विस्टर ये टूटी चूंच का तोता, तोती की चूंच टूटी।
0: यस, ऐसे ही है।
1: टूटी चूंच का तोता, तोती की चूंच टूटी, टूटी चूंच का तोता, तोती की चूंच टूटी, टूटी चूंच का तोता, तोती की चूंच टूटी, टूटी चूंच का तोता, तोती की चूंच टूटी, टूटी चूंच का तोता, तोती की चूंच टूटी।
0: अरे वाह, मतलब क्या जा रही हो चोंच के साथ। अच्छा, कुछ और कहना है सरदर्द? थैंक यू सो मच। और ये सरदर्द वो वाहिद बनती है जो रोज विनर बनने के लिए कॉल कर लेती है, बिचारी। 03000

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
4: वार्ड कमीशन की तैयारी लाए अचरक वासी के कंसल मुकरर करने जो मंजूरी दिनी वही PCC यूनिट जो भी नालो तब्दील करे सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड रखियो वयो बास्को का 2,28,000 मेट्रिक टन कण खरीद करण की मंजूरी 3,00,000
5: नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जून बक्शिश में चीन समेत मुख्तलिफ मुल्कन के परदेही वज़ीरनि सां मुलाकातूं बिन तरफ़ लागापन समेत खिते की सूरतहाल ते ॻाल्हियूं इसहाक़ डार चीन ईरान अफ़ग़ानिस्तान परदेही वज़ीरनि सां मुलाकात कई परदेही ऑफिस मौजूद मुलाकातनि दौरान बिन तरफ़ लागापन ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं
4: मेयर भरसां चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पुराणे तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल 3 ॼणा ज़ख़्मी ॻोठ हासिल खोसो में चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां जहिड़ो थी पियो फायरिंग जे नतीजे में 35 वरनि जो सजाद वलद बख़्शल चांडियो क़तल थी पियो ॿिए दर्जा इम्तियाज़ चांडियो वाहिद बख़्श ऐं गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो लठियूं लॻण सबबि सख़्त ज़ख़्मी थी पिया
5: दादू में अवामी फोरम जो ज़रिए पाणी जे कोर्ट ख़िलाफ़ धरणो हारे नाबादगारनि ऐं शहरनि शाहजहान पार्क खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी धरणो हयो अॻवाननि चयो आहे त दरियाहान में पाणी जी सूरतहाल बहितर हुजण बावजूद शाखनि में पाणी जी खोट आहे फसल सुकी रहिया आहिनि आबादगार परेशान आहिनि पाणी फराहम कयो वञे

0: NPS तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच

वैसे अब आप ये सोचेंगे कि भाई आसमान और जमीन के बीच में दरमियान में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे हमने नोटिस करा है बहुत सारी चीजें, वो क्या क्या चीज है आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, आपने मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। और जल्दी से मुझे 888 पर ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और कोई अच्छी अच्छी से गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप फरमाइश कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और अगर आप हाँ जी घुड़ने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि बहुत से लोग घुड़ने वाले लिसनर्स होते हैं, वो ऐसे क्योंकि वो हमारा प्रोग्राम तो सुन रहे होते हैं लेकिन वो शामली प्रोग्राम नहीं हो पाते हैं, तो जनाब इतनी ज्यादा जो ना वो खामोशियां अच्छी नहीं होती। वैसे भी कहते हैं कभी ना कभी खामोशियों को तोड़ लेना चाहिए, और इसी के साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और इसके अलावा मुझे बताइए, हाँ जी भाईजन आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी समाज है, तो उनको वेलकम और मोहब्बतों के साथ जनाब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम दिखा तो टाइम हो जाता है जनाब, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाया जाएगा, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास आएंगे, तो जनाब मजीद आप लोगों में से कितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, क्या क्या कह रहे हैं, कौन कौन से गाने सुनेंगे, ये जरा वापस आकर आप लोगों को बताते हैं। आप जरा ज्वाइन करके जाइए और टॉपिक को फॉलो कीजिएगा। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग जीएफएम 88 नेटवर्क। आप सुन रहे हैं जल्दी का नाम, नमस्ते।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज।

0: इस्तेमाल लाया है। अक्सा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज।
4: तो तेरा मेरा ही प्यार अमर हाजिर हाजिर और ये मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, आप कैसी हैं? आपका शुनाइस सांगी सिटी से सैयद इमदाद बुखारी हमारे साथ है विद माय फ्रेंड्स हैं ताहिर लंडर, राशिद लाखो, जहीर महर एंड रियाज जस्कानी। ओके सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है। और सुल्तान पर खां अब्दुल गनी जुड़ी जो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान साहिबा, शो नाइस है जवाब क्या बात है शीला जो गानों तव फरमाइश कर है। तो चलो पे तमाम टॉपिक के फॉलो कर टॉपिक के जवाब भी सही दिनों है। सोचो तो शीला जो गानों बुधूंगा। अही गानों भा सोने के डेडिकेट है जो नालो है अब्दुल गनी जूने जो।

मरहम बि आहे, बिल्कुलु ईअं थींदो आहे। असां इंसाननि खे लॻंदो आहे त जेकी असांजे ज़िंदगीअ में दुख ईंदा आहिनि, तकलीफ़ हूंदियूं आहिनि, उहे सिर्फ़ असांजे लाइ आज़माइश हूंदियूं आहिनि, पर कई मरतबा ईअं बि थी वेंदो आहे त जेके माण्हू असांजी ज़िंदगी में हूंदा आहिनि, यानी आसपास जेके बि असांजा माण्हू आहिनि, उहे माण्हू बि असांजी आज़माइश जो सबबु बणजंदा आहिनि। ऐं कुझु माण्हू अगरि असांजी लाइफ में मौजूदु हूंदा आहिनि त उहो सबर जी या फिर ॾिठो वञे असांजो सबर जेको आहे न उनखे मतिलबु सिंधी थोरी मुंहिंजी कची आहे, मां चीज़ूं एक्सप्लेन न करे सघंदी आहियां सिंधी में। कुछ लोग जो हमारी जिंदगी में होते हैं ना, वो भी आजमाइश के तौर पर आते हैं हमारी जिंदगी में, क्योंकि देखा जाता है और कितना हम सबर करते हैं जब वो लोग हमारी जिंदगी में मुश्किलों का बायस बनते हैं। और वैसे ये चीज तो हमारे जहन में होती है कि अल्लाह की तरफ से हमें जो आजमाइशें में होती है वो दुख या तकलीफ की सूरत में मिलती है, लेकिन ऐसा आयते हैं तो वो भी हमारी आजमाइश के तौर पर ही देखे।

सो मुख्य चेपे हुए टीचर आए बेसिकली तो घर वेंदी आ चेपे जदी में मां घर वेंदी आ तो मुजी अम्मी जको ने तां जो प्रोग्राम बुधंदी आ आई एक दफो मां चो मां समी मुजी दोस्त थई तो चेपे न या वर तुजी दोस्त काडा हुंदी मुझे इतनी हंसी आ रही थी कसम से वो कहती भाई मेरी सास भी तुम्हारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनती है तो फिजा जी सस असांगे बुधे और कह रही थी उनको मतलब शो में एड करना मैं भूल गई थी कल परसों आज मुझे भी फिजा देखा तो याद आ गया कि हाँ फिजा ने कल परसों ये बोला था तो बिल्कुल जी फिजा जी सस असांगे बुधे पे एडी शौक से असांजो प्रोग्राम बुधन आए हाँ अम्मी बिल्कुल माँ फिजा जी दोस्त है मतलब

नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे, याद कर लिया. गाना एंजॉय करें और गाने के साथ साथ हम जरा जाएंगे जी न्यूज ब्रेक की जाने में, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे. आपने कहीं न्यूज़ हमारे साथ मौजूद रहेगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे पूरे तीन बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. चलती रहेगी पूरे पूरे तीन बजे तक.

0: अपना शहर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान

0: रांगो कॾहिं बि न थींदो, वॼायो ताड़ियूं, ही सिंध हमेशह रहंदी।
1: कोई सामने हो या पर्दे के पीछे हो, ये 50 सालों से खेल रहे पाकिस्तान की धरती के साथ कि बलूचिस्तान के हालात को देख रहे हो तो कहां पहुंच गई। क्या तुम फिर चाहते हो कि सिंध भी इस हालात में आ जाए? तोड़ोगे, कितना तोड़ोगे, क्या तोड़ के करोगे, क्या मिलेगा? कि है तो सिंध एक है, नहीं तो कुछ नहीं।
2: कि तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं।
1: हम ये कैसे मान सकते हैं, कैसे तकलीफ कर सकते हैं कि हमारा बाजू अलग हो जाए, टांग अलग हो जाए, सिर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए? ऐसा कतन नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि सिंध की तकसीम की बात हो।
0: सिंध असेंबली मैरिथ पेश करण जो मकसद सिंध जे अवाम खे सूरत हाल खां आगाह करण आहे। सिंध जी अवाम पंहिंजो रद अमल ॾेई छॾियो आहे। सोशल मीडिया उन जो गवाह आहे, जिन खे हिन धरती पनाह ॾिनी हुई, मादरे वतन ऐं माउ जा टुकड़ा करण जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध जे मुस्तक़बिल जो फैसलो सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंदा। पीपुल्स पार्टी एम पी निसार खोड़ो जो सिंध असेंबली में ख़िताब। पी पी मेंबर राजा रज़ाक बलोच चयो त सिंध असांजो वजूद आहे, पंहिंजे वजूद जी विरासत कीअं था करे सघूं। सिंध हिकु तारीख़

0: ताज़ी बि सुञाणप आहे। संजय राव छॾींदड़नि खे यादि रखणु घुर्जे जेसीं ताईं हिकु बि हिलाली पुटु मौजूदु आहे त सिंध विरिहाइजी न सघंदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो त पंहिंजनि अकाउंट खे जो ख़ुश करण लाइ सिंध विरिहाङे जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि। फॉर्म 47 ते अचण वारनि खे इख़लाक़ी तौर अहिड़ी ॻाल्हि करण बि न घुर्जे। फ्रम किरियो चयो सोमबर पुॼी वेंदी त सिंध जो हिलाली पुटु केरु आहे। असां गोलियूं खाइण लाइ तयार आहियूं पर पंहिंजी माउ सिंध खे विरिहाइण न ॾींदासीं। नजम आलम चयो त मोहसन नकवी केरु थींदो आहे। सिंध जी विरिछ कराइण वारो इस्लामाबाद खे पैगाम ॾियणो आहे त सिंध हिकु आहे। हिकु रहंदे दुनिया जी का बि ताक़त हुन खे विरिहाए न थी सघे।
1: अगर सुबह की उठ रही है या इंतजाम एन आईन के मुताबिक है। कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, निसार बोरो साहब ने भी बताया, सर एक है एक रहेगा। मैं मुराद अली शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंतजामी यूनिट बनाने से सिंध मजबूत होगा।
2: मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब इस सिंध में शहर हो सकते डिस्ट्रिक्ट सकते तो इस सिंध में इंतजामी यूनिट क्यों नहीं हो सकते। इतनी फिक्र है सिंध की, इतनी फिक्र है। 22,000 अरब रुपए 18 साल में खा गए।
0: सिंध असेंबली में नव सूबनि बाबति मामूली रिथ पेश करण ते MQM मेंबर निसार खोड़ो जा थोरा मञिया। शारिक जमाल चयो त असीं सिंध ख़िलाफ़ न आहियूं, सिंध जो हिकु इंच बि हेॾां होॾां न थींदो, पर हिकु अहिड़ो दलील आहे त इंसामी साइणी न ॾींदासीं। असांजी धरती माउ पाकिस्तान आहे। सिंध जे माण्हुनि खे सुठी हुकुमानी घुर्जे थी त असांजो साथ ॾियनि। रेहान अकरम चयो त नमन सूबनि बाबति मामूली रिथ अचण सां असांखे पंहिंजो मौक़ो पेश करण जो मौको मिलियो आहे। शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1960 में नव सूबनि जे क़याम जो तरीक़ेकार वाज़े कयो। भुट्टो खे ख़बर हुई त मुस्तक़बिल में नव सूबनि जी ज़रूरत पहुची सघे थी। त सिंध जे विरिहाङे बाबति कयो, उथई सिंध वेस्ट जहिड़ा सूबा ठही सघनि था। हिकु राम न हलाए सघे त पोइ 5 वज़ीर हुजणु घुर्जनि। आमिर सिद्दीकी चयो त को बि नथो चाहे त सिंध विरिहाइजे, पर अवाम जा मसला हल न आहिनि कया। माण्हू हालत कड़ी आहे, पंहिंजा मल ठाहे छॾिया अथव। मका दिफ़ाई मुआदे खे इदारती शिकिल ॾियण ऐं मुस्तक़िल सेक्रेटरेट क़ाइम करण ते इतफ़ाक़। सरबराह पाकिस्तान हवाले, सेक्रेटरेट जो पहिरियों सरबराह 3 सालनि लाइ पाकिस्तान मां मुक़ररु कयो वेंदो। इस्तंबोल में मुआदे तहत क़ाइम मिनिस्टर जी सियासी ऐं दिफ़ाई कमेटी

0: मुलाकात तुर्क आज कौमी दिफा वाले वजीर अशार गुलर तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह जनरल साहब फील्ड मार्शल जो मुलाकातों मुलाकातों दौरान गयल दिलचस्पी मामलन बदतरफी दिफाई सरकार इलाके सलामती सूरत के ख्याल की दे ISPR मौजूद आर्मी चीफ जो मुलाकातों टिन्ही मुल्क विच में भाईचारे की मजबूत लागापन दिफाई सरकार के अक्कासी कर वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान विच में मुलाकात बिश्केक में शंघाई इस्तांबुल तंजीम के सरबराह इजलास के मौके से थियल मुलाकात दौरान पाक ईरान बतरफन लागापन मुख्तलिफ शोबन में सहकार समेत ताजी सूरत ते ॻाल्हियूं बतरफन लागापन के वधीक हथी ॾियण ऐं मज़बूत बणण जो अब अज़म
1: आप सुन रहे थे KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 भर दान जाकी यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ओके जी, सर वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं चल दिखना मस्ती प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। प्रोग्राम में आप लोगों के मैसेजेस होंगे, आप लोगों के गाने होंगे, आप लोगों के प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं जो प्रोग्राम में चार चांद लगा देते हैं। और इसी के साथ साथ बिल्कुल आपके मैसेजेस काफी सारे जमा हो चुके हैं, शामली प्रोग्राम रखे जाएंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी अभी सुनाया स्टार्ट किया है उनको वेलकम करते हैं। बाकी जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर मौजूद हैं उनको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, तो जनाब वेलकम। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-1। बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं वो सरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है, खास करके उन लोगों के ऊपर ना जिनको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया उन्होंने कि हाँ जी भाई जान क्या हो सकता है आसमान और जमीन के दरमियान। तो बिल्कुल आप बताइए मजीद जो लोग बताना चाहते हैं। अगर आप भी टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं तो जी मोस्ट वेलकम, फॉलो कीजिए और मुझे बताइए आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। फिजा तो बिल्कुल भी नहीं आती, फिजा को बीच में मत लाइए। और फिजा आजकल वैसे बड़ी मोटी हो गई है, दरमियान आ भी नहीं सकती। अभी जी तो जल्दी से जो है हमारे प्रोग्राम का और उसके अलावा जो है तो मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों के पसंद के जो गाने हैं ना वो भी साथ साथ हम जरा सुनते जाएंगे। अच्छा, गाने तो खैर लगाएंगे लेकिन आप लोगों के मैं क्या सोच रही हूँ कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं।

जवाब कोई कोन ॾींदई अहिड़ो जवाब हकीकत है बिल्कुल बिल्कुल मां समझी में न ॻाल्हि खे त तव्हां जहिड़ो जवाब कोई ॾेई नथो सघे सुबुह और मक़सद इस करते हैं माण्हू ईअं छो चिकानो इसमें उमेद बि नही थी जब लोगो ने इहे कहना स्टार्ट किया बाक़ी हाणे ख़बर करणो क्योंकि लाड़काना में बहुत चिंगचिया हो गई और चिंगचिया की वजह से जो है ना वो लाड़काना करता है तो बाबा ये जो चिंगचू आए ना एडो बेजार कर चिंगचिन बस छाई चवा हाँ मां मुख्य अलाई छो मतलब चिंगची रोड से हलंदी आ ती लगन ही चलता फिरता मतलब जो ना खतरो है छो तो मु कदें भी कें भी चिंगची में ब्रेक भी ना डिठो साइड मिरर्स सू अंधा धुन हलाईंदा चिंगची उनकी नजर बीठो हों एडा होडा बस दिसा की बिल्कुल खबर ना पवी तो बाबा को क्रॉस करे तो या का गाड़ी से थी बस उन यो हों सिर्फ एडे ओडे दिसा नो ब्रेक नो साइड मिरर वाले बाबा थोड़ो दिसो अला मनो बेन की सेहत जो बेन की जिंदगी हिकु त तव्हां पंहिंजे चिंची में ब्रेक लगायो ॿियो साइड में रेस लगायो न ख़बर पए त हेॾां होॾां कोई अचे त कोन थो छो त इलाही दफ़ा असां सां ईअं थियो आहे असां ईअं निकिरंदा आहियूं त करे अचे सो इट्स वेरी डेंजरस मतिलब चलता फिरता ख़तरा सो लाड़काणे में चिंचिन जो एॾो तादाद वधी वियो आहे मूंखे मतिलब चवण में बि थोरो अजीब फील थिए थो न कयो बाबा ॾिसो

शमन जो गानो हलायो है ढो भलो गानो असि फरमाशी बाबा इन गाने जी अवलेज जंगेजा सिटी रतो देरो रियाज हुसैन जतोई है फयाज हुसैन जतोई है मोहम्मद हाशिम जतोई शहनवाज अली शहनवाज जतोई न शहनवाज जवाब तो दिनो है जो सही सही सही समझी वी गानो तवे नाले आयो तव गाने के

मेरा बाबा सखर में या कराची वहाँ खिचुनते थे लाड़काने में भी मायो रिक्वेस्ट करो एप्लीकेशन कदम करो लाड़काने में मतलब वाकई असान के नानो थे असान छे वेंदी।

ॿुधी गाने खां पोइ बाज जेको आहे शिन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटी नासी जंहिंजा माण्हुनि जा मैसेज आहिनि बाबा अॼु लॻे थो मैसेज लाइ रहिजी विया आहिनि सभु पढ़ूं था बाबा सभु पढ़ूं त तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजी स्पीड जी सो मां उहो वञी उहो मोटा थी तव्हां सभु हिते वेठा हुजो कारी नवनि जो ॿुधंदा रहो प्रोग्राम जल्दी ॾिसण जो साथ पूरे

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज सिंध।

वापस आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिनके नाम मस्ती आके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और तमाम दो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद करते हैं। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत चाहतों का बेहद वाला। इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है। सवाल आप लोग आप बताते जा रहे हैं, लेकिन मैसेजेस काफी सारे ट्री मैसेजेस भी पढ़ते आएंगे। हाय सिद्धराव जी, अल्ताफ अली गादी बलोच, आप हमें कराची से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपने टॉपिक के ऊपर इतने सारे मैसेज कर दिए बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बस सब्र करिए, आपको बताएंगे जवाब क्या है। और मोहम्मद जमान हमारे साथ है, वेलकम स्वीट बुआ जी। गुड गुड ही हमेशा की तरह टॉपिक आई थिंक ओके, सिर्फ मखलू कोई तक बेटी पहला चीजों आए और कहते हैं मेरा ऐसे में स्वीट नहीं हुआ, नाराज आई छा न बाबा छो नाराज छो कहा छा करो आता करो चिंची के लाइन। और हमारे साथी गोट है मोमन तैयब थे, वो हबी बुला थे, वो तमाम जो शो वेरी नाइस आए, थैंक यू वेरी मच। लिखा है आपने, मुझे समझ नहीं आई बात, सो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ ही आपको वेलकम कहा जाता है। और बिल्कुल ही चाचा, मैंने देख ली आप सब लोगों के मैसेजेस पर मेरी नजर होती है, कोई भी मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकता। और कश्मीर से हमारे साथी जुबेदा बलोच, हमारी भाभी, हाय सदरा नाइस शो आंसर आपने दिया है, बिल्कुल दुरुस्त, क्या बात है भाभी जान। और ये हमारे साथ हैं जी, गुड आफ्टरनून जी, आंसर है जमीन आसमान के दरमियान।

बैठ गया है डर, वो जब खत्म होगा तो फिर कुछ सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे। बहुत शुक्रिया। और मामा जवान कहते बुआ जी, एक तो पैसे खर्च हो रहे हैं, दूसरा आप हमारे SMS रीड नहीं कर रही हैं, हम मासूम के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस आज ऐसा है कि आपके मैसेजेस पढ़ने में थोड़ी सी मुझे लेट हो गई है, सो डोंट बी सैड। और यहाँ पर हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम रोशनियों का सिटी कराची को, और हम हाँ कहती, और हम चिंचियों का सिटी लाड़काना को कहते हैं। बेशक कुछ टाइम पहले इस पे स्टोरी रखी थी, बड़ा हंसी थी। और हमारे यहाँ तो एक चिंची है, वो भी क्या बात है, क्या बात है, ये सही है, कितना तरह के बर्दाश्त करे, इतनी सारी बर्दाश्त नहीं होती, ये इन्होंने बदल दिया है, बहुत बढ़िया, पसंद आई बात मुझे। और कहती, ओए प्यारी ये क्या तुम, हाँ वैसे सही।

everybody, salam, happy Tuesday afternoon, my sweet best Ajay Sadra sisters. Kaisi ho dear sweetie, main theek hu, tum batao kaisi ho hamari pyari Fazli. फहीम बिल्कुल आपका ये जो मैसेज ना कुछ टाइम पहले वाला मैसेज ठीक है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है तो इसका आज जो है ना वो थोड़ा सा टेंशन ना लें क्योंकि उनका इलाज अभी होगा थोड़ा आप सबर करें मतलब जेको ना प्रोसेस में आए इन चीजों और हमारे अल्ताफ अली गाराची मुझे अभी सॉन्ग सुनाओ ओ प्रीज ओके इतना टाइम के बाद आपको गाना याद आया जब इतने तो शायद लगा भी देते अभी तो जिन लोगों ने पहले फरमाइश करी थी ना ऐड कर दिए थे मेरे और बहुत शुक्रिया आप 5 बजे वाले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कीजिएगा आपको लाजमी गाना सुनाऊंगी असा खाई वेंदा आहियूं अच्छा साइमा कहती है शो मस्त है टॉपिक तबियत नासाज है इसीलिए नहीं आ रही थी चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्या हुआ है वैसे बताएं और चाचा खालिद कहते हैं हाँ बिल्कुल वो पता है और बाकी इनकम का मुझे नहीं पता मैं नन्ना मुन्ना ही देश का सिपाही यू नो ना मकसूद मना कहते हैं मास्टर मास्टर जो गानों हलाए बाबा तां बुधो हूंदो हाणे भी हमारे साथ ही ये अस्सलाम वालेकुम अदा छाला तांजो ठीक आया इलाही बख्श बुग्यो हमारे साथ है कहते हैं बाजी माशाल्लाह तवांजा प्रोग्राम भला हुंदा आहिन पसंद आहिन असांखे सदा सलामत रहो थैंक यू सो मच प्यारा सोना भा तांजो मोहब्बतूं आहिन

ओके जी, क्या बात है, बहुत था जरा उसका 20-30 तो मैसेज खाली आपने हमें भेजी अल्ताफ अली गादी जी। और अच्छा, तो टॉपिक का जवाब जो है वो होने वाला है। अच्छा, मैंने सवाल पूछा है कि आसमान और जमीन के दरमियान क्या आता है, तो आसमान और जमीन के दरमियान जो है ना वो और आता है, और जब आप आसमान लिखें और लिखें तो और आएगा ना। इतना आसान सा सवाल था कि आप लोगों का, जिन्होंने भाई बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया और बाकी थोड़े थोड़े लोग थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा गलत जवाब दिया। और ये फहीम कहते हैं दादा, मतलब हाँ ऐसा, ये बचत के बारे में तो मैं खैर से थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, बाकी ये है कि स्कूटी का शौक जो ना मुझे 2018 से लेकर है, 2018 से लेकर मतलब मैं क्रेजी हूँ। तो वो है कि फिर ये था कि बस नहीं ले सकी थी, यही रीजन था कि भाई यहाँ पर कोई चलाता नहीं है, इतना माहौल नहीं है, ये नई चीज है, वो नई चीज है, तो उस वजह से मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है रहने देते। लेकिन अभी तो ट्रेंड आ चुका है बहुत ज्यादा, तो फिर मैं सोच रही थी कि ओके ओके जी रिपोर्ट। भाई मेरा थोड़ा सीन अलग है, मैं मतलब मेरी जो आदत है ना वो थोड़ी थोड़ी ऐसी है, बाइक चलाऊं और बस ऐसी लड़कों वाली है। हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रेक है और इस गाने के साथ आप लोगों से लेते ही इजाजत। अपना ख्याल रखें, ठीक है, अपना ख्याल, सारे प्रोग्राम है सो अपना, सारे लोग ढेर सारा ख्याल रखिए इंशाल्लाह। पंचपचे वाले प्रोग्रामों में थे भाई, सो मुकरानी नाही बाबू सिंह सलामत, सास सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: शाह नसीर। अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।
6: पाणी हिते जे माण्हुनि लाइ लाइफ लाइन आहे। पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। पाणी खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौर इस्तेमाल कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सिग्नल सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरप्राइज़ इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त आलमी वाइदनि ते रूह मूजिब अमल थियणु घुर्जे। मदो बि कंहिंजे

मुल्क जे राजधानी इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसाति तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं किरण जे नतीजे में मिजड़ा फोत थी विया। रोड रस्ता तलाउ जो लेख ॾियण लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वयूं। E11 नालो भरजण सबब पाणी आबादी में दाख़िल। केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नालाली में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं बाद फ़ौज तलब। गवाल मंडी ऐं कटियारिया में बि सूरतहाल ख़तरनाक बणियल। पिंडीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलण लॻियूं। बरसाती पाणी सबब रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया। सिंध काबीना ई आफिस ऐं ई काबीना खे इदारनि जी शकल ॾियण जी मंज़ूरी। गाॾियुनि जे हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबे जे कचे वारे जी मंज़ूरी। अवार्ड में अशरफ वास्ते खे कंसल्टर मुक़ररु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। PP यूनिट जो नालो बि तब्दील करे सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड रखियो वियो। पास्को खां 2,03,000

0: अमेरिका भी इस्लामाबाद मुफ़ाहमत ॾांहुं वापसि आयो त ईरान बि तकिड़ो ऐं मुस्बत जवाब ॾींदो। अॻूणे निगरान वज़ीराज़म मोहम्मद मियां सुमरो इख़्तियार ज़िले ऐं तालुक़े सतह ताईं मुंतक़िल करण जी हिमायत करे छॾी। मोहम्मद मियां सुमरो चयो आहे त इख़्तियारनि जे हेठें सतह ताईं मुंतक़िली सां बहितर हुकुमरानी क़ाइमु थींदी ऐं अवामी मसला हल थींदा। वसीलनि जी शफ़ाफ़ ऐं मुनसिफ़ाणी विच लाइ सूबाई ज़िले ऐं तालुक़े सतह ते फ्रांस अवार्ड्स खे लाज़मी करार ॾियण जी बि ज़रूरत आहे। स्कूलनि, इस्पतालनि, रोडनि, पाणी ऐं नेकाल जे मनसूबनि जे फंडनि जी बि आज़ाद निगरानी, मुसलसिल ऑडिट ऐं सख़्त एहतसाब ज़रूरी आहे। ठठे वेझो पीठनि जो लाश हथ वारसनि पारां क़तल जो शख़्स ज़ाहिर। जुमशाही पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज। जुमशाही फाटक वटां पंजवंजाह जखरो जो लाश संदसि मोटरसाइकिल भरिसां मिलियो। वारसनि पारां क़तल जो ख़दशो ज़ाहिर कयो वियो। जुमशाही पुलिस जे रवैये ख़िलाफ़ एहतजाज। इंसाफ़ जी घुर कई वई। दादू में अवामी फोरम जो ज़रिए पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ धरणो। हारिन आबादगारनि ऐं शहरनि शाहजहान पार्क खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी धरणो हयो। अॻवाणनि चयो आहे त दरियाहान में पाणीअ जी सूरतयाल बहितर हुजण बावजूद शाखनि में पाणीअ जी खोट आहे। फसल आबादगार परेशान आहिनि। पाणी फराहम कयो वञे। घोटकी में अॻोणे SHO क़ाबिल भयो मथां। पीका एक्ट तहत वधीक हिकु केस दाख़िल। ॻोठाणे मलहन शहर खे लाकअप अंदरि तशदुद ऐं तज़लील जो निशानो बणाइण ते केस दाख़िल कयो वियो। SSP तरफ़ां नौकरी तां बरतरफ़ करण बाद आंदल सुंदराणी थाणे जो अॻोणो SHO गुम थी वियो आहे। जोही ऐं नवाबशाह में आबाद जा वाकिया। नौजवान पेश इमाम ज़िंदगी जो अंत आंदो। जोही जे गोट बचल खां रिंद में नौजवान अदनान रिंद पाण मथां पिस्टल जा फायर कया। वारसन जो चवण आहे त नौजवान घरू मसलनि तां कावड़ जी घर जे कमरे अंदरि पाण मथां पिस्टल जो फायर कयो। नवाबशाह में मस्जिद जे मोली घर अंदरि फाओ खाई आबाद कयो। कुमार कॉलोनी जे मस्जिद जे पेश इमाम एकाट वरन जयाद सना ज़िंदगी जो अंत आंदो आहे। घर अंदरि फाओ खाईंदड़ मौलवी जे आबघात जो कारण मालूम न थी सघियो।
1: आप सुन रहे थे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहर,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: पे
1: जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद 91.6 सिंध जो आवाज
1: उसी खिस्मत
2: जी एफएम नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

BFM 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम टावर्स जे एंटीनाउन जे आधार उन सा गडोगड इंटरनेट जे आधार जिन जिन सुरीलेन समातन ताई ही आवाज जी उडार पहुंचे पई उन्हें सबनी जे लाए हाजुर आहे शो सिंधड़िए जी शाम। सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम कंदे यकीनन अवां जी खिदमत में हाजिर आऊं अवां जो पंहिंजो यूनिस बकारी। खबरचार ॿुधायो अवां जो वक़्तु कीअं थो समकी ऐं कहिड़ी ख़बरचार। मूंखे पूरी पक आहे त तव्हांजो वक़्तु सुठो गुज़रंदो हूंदो ऐं अवां जे सुठे वक़्तु गुज़रण जे लाइ असां हमेशह दुआगू हूंदासीं। तव्हां जो हर पल ख़ुशियुनि मां गुज़रे, ख़ुशियुनि वारो गुज़रे, ख़ुशियुनि में हुजो ऐं बाग बहारनि में हुजो ऐं अवां जी बुरक मेरी न थिए। बसि जिते बि हुजो हशाश वेठा। जनाब असांजे तमाम स्टूडियोस जे स्टूडियो इंजीनियर्स ऐं टेक्निकल अमले जे सहकार जे करे, उते जे मैनेजमेंट जे करे असांजो आवाज़ सॼी सिंध में गूंजी रहियो आहे ऐं सॼी सिंध जे बहारुनि वारे आवाज़ में। जॾहिं बहारूं हूंदियूं, साज़ हूंदा, आवाज़ हूंदा, प्यार हूंदो, पंहिंजाए पवंदी, त पोइ हूंदी अव्हां जी का। सिंधड़ीअ सुहिणे शायर नियाज़ पिताफ़ी चयो त किन जे मुंह में मिसरी, किन जो वात गुलाब, से माण्हू लाजवाब, लुत्फ़ जिन जे लफ़्ज़नि। सो जनाब अव्हां जे मोहबतुनि, अव्हां जे प्यार ऐं पंहिंजा पंहिंजे रंगनि खे शुरू करण खां पहिरियों, जेको पहिरियों रंग असां शुरू कयूं पिया, उन पहिरीं रंग खे शुरू करण ताईं कुझु मैसेजेस अची चुका आहिनि। जी हा, असांखे कुर्बान अली खासकेली साहब ज्वाइन कयो आहे झंडे मरी खां, ऐं अव्हां जूं तमामु घणी महिरबानी मोहबतूं। ऐं दानिश बकारी सफ़र दौरान असांखे ज्वाइन कयो आहे, अव्हां जूं मोहबतूं महिरबानी। ऐं खोड़ सारियूं अव्हां जूं मोहबतूं। अॼु असां अव्हां जूं कॉल्स वठंदासीं, मैसेज ऐं तरीक़ेकार इहो ई हूंदो, तव्हां टाइप करे MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे गुट शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो, 8881 ते मैसेज मोकिलियो। मूं तकिड़ो अलाए छा चयो, तव्हां इहो सोचींदा हूंदो। हा, टाइप करियो MTI, हुन खां पोइ स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखो ऐं 8881, यानी टे दफ़ा 8 ऐं 1 ते सेंड करे छॾियो। हाणे हाणे मैसेज अञा बि तव्हांजा पहुचंदा। मैसेजनि जी बरसाति जेसी ताईं तव्हां ताईं पहुचे, तेसि ताईं आवाज़ ई दुनिया जा गुलाब ऐं उन्हनि जी ख़ुशबू अवां ताईं पहुचायूं था। जेतोणीक जेको आवाज़ तव्हां लाइ प्ले करे रहिया आहियूं, इहो आवाज़ को नओं ट्रैक रिकॉर्ड करण लाइ कंहिं नए स्टूडियोज़ में न ईंदो, छो त उहो आवाज़ असां खां विछड़ी चुको आहे। पर जेसि ताईं सिंध जा सुर सलामत रहंदा, इहो आवाज़ सिंध में गूंजंदो रहंदो। उहो आहे अलाह ॾिने ख़ासि कैली जो आवाज़। अचो त कच्छी ॿुधूं।

टाइप कंदव MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखण खां पोइ पंहिंजो नालो ऐं 88 81 888 1 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। असांखे नंबर बि ॿुधाए छॾींदासीं, तव्हांजो कॉल्स बि वठंदासीं। सो उहो नंबर तव्हांखे मां कुझु मैसेज रीड करे वठां, पोइ कॉल नंबर ॿुधाए छॾींदुसि, जंहिं ते तव्हां सां हाल अहिवाल बि थींदा, दिलि जूं ॻाल्हियूं बि थींदियूं। सो जनाब, असांखे मैसेज ॻोठ हाजी सहते खां पहुतो आहे। जी जनाब, असांखे यादि कयो आहे हाजी, महिरबानी, मिठो माण्हू भली कार, शहबाज़ खासकेली मिठो माण्हू ॿुधे पियो, साले सोलंगी, ताज मोहम्मद सिर्फ़ सहतो सहतो ॿुधनि जा वॾा तूं, अवां जूं भलायूं ऐं भाल साला साल यार।

0: तव्हां जो थोरो
1: बिल्कुलु आवाज़ सही पियो अचे राणा।
0: हा हाणे आवाज़ सही पियो अचे, ठीकु आहे। कहिड़ी ख़बर चाहे
1: मुंहिंजो प्रोग्राम तव्हांजो भलो हले पियो, ॿुधूं पिया शाम जे पहर में जेकी तव्हां फरमाइश हलाई हलंदो ख़ासि केले जी
0: आमीन आमीन कुर्बान भले आऊं फरमाइश तव्हां खां कयां त तव्हां असांखे थोरो गाए ॿुधायो त कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदा।
1: अॼु तव्हांखे कलाम गाए ॿुधायूं
0: पर थोरो ॿुधाईंदे छो त मूंखे ब्रेक वठणो आहे।
1: हा बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधायूं
0: था। हा ॿुधाए जल्दी ॿुधाए।
1: मुझे महबूब के था तुझे
0: साईं महिरबानी लख थोरा मौजूद ख़ाती नज़र आती इन ते शॉर्ट ब्रेक जो टाइम थी चुको आहे ऐं असांखे शॉर्ट ब्रेक वठणो आहे। असां अॼु खोड़ ॻाल्हियूं कंदासीं, दिलचस्प ॻाल्हियूं कंदासीं, पर तव्हां हाणे कॉल फ़िलहालु न कजो, ॿ टे मिंटनि जो ब्रेक हूंदो। सफ़ा शॉर्ट ब्रेक आहे, केॾे न वञिजो, छो त हिकिड़े ॿिनि मिंटनि जे ब्रेक खां पोइ जॾहिं मां तव्हां वटि वापसि ईंदुसि, दिलि जूं ॻाल्हियूं तव्हां सां करणियूं आहिनि। कहिड़ियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि? छो त शाम जो पहर नाओ अव्हां जे आहे ऐं अव्हां जो पारां असांजे लाइ छा आहे। गीत ॿुधाईंदव, शायरी ॿुधाईंदव, ॻाल्हियूं कंदव, टहक ॿुधाईंदो, जेको कुझु ॿुधाईंदो अॼु हूंदासीं गॾु गॾु, त पोइ असां सां गॾु रहिजो। GFM 88 रेडियो नेटवर्क मां जी ख़िदमत में असां सां गॾु
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यक्ष
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
5: GAFM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू। हुए हुए थैंक यू थैंक यू। भलीकार चवंदासीं, जबरदस्त आवाज़ तव्हांजो। ऐं हाणे जी जी ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, केर साहब ऐं किथां खां?
1: इरफान अली थेबो तालका साले पच खबरी बिट गुलाबी संगत खां तां संगत।
0: छा हाल आहे इरफान थेबो साहब, खुश आहियो, ठीक आहियो?
1: अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु आहियो,
0: अलाह साईं जा एहसान आहिनि, तव्हांजो दुआऊं आहिनि। इरफान
1: तव्हांखे कोई सॉन्ग ॿुधाइजे?
0: वाह वाह, थी वेंदी।
1: तव्हांजो आहे
0: मुंहिंजी ॿुधण जो मूड आहे, बिल्कुल ॿुधायो ॿुधायो ॿुधायो।
1: बिल्कुल बि मूड में आयो सफ़ा।
0: अच्छा, असल ख़बर छा आहे त हिकिड़ो असां गानो ॿुधो हाणे थर जी भिट ते वेठल असांजे प्यारे ॿुधंदड़ भाउ खां, ॿियो वरी ॿी भिट जेका सखर ज़िले में आहे खबड़ी भिट, उते हमरा वेठो आहे। ॾिसूं था हिकिड़ी भिट खां ॿी भिट ताईं जेको आवाज़ गॾिजे थो उहो सिंध जो आवाज़ कहिड़ो हूंदो। शाम जो टाइम आहे, प्रोग्राम जो नालो पाए सिंधड़ी जी शाम, त पोइ खबड़ी भिट थर पारकर न बल्कि खबड़ी भिट सखर जेका सालेपट में आहे, उतां खां तव्हां सां ॿुधायो पिया, छा था ॿुधायो? जी

0: थैंक यू वेरी मच तमाम घणी महिरबानी टाइम वक्त आहे ब्रेक जो पर हिकड़ी कॉल ॾिसो था केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो ओके जनाब असां कॉल वठंदासीं कमर्शियल ब्रेक खां पोइ त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थी चुको आहे हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे बाक़ी ॻाल्हियूं ब्रेक
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
4: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण
3: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
5: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
6: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
7: उसी खित्ते की बनी है आवाज
6: GA FM नेटवर्क
7: सिंध की आवाज़।

0: वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भला जिक्र अवां के चोजे थोड़ो गुनगुनाए बुधायो थोड़ो गाए बुधायो तो गायण ईदो आ
1: यो तमाम मुश्किल कम आए
0: न मुश्किल छो आ मु पेरिम सवेरे जिस्कानी साहब के बुधायो पे ते रुण आई गायण हर मानो वेंदो आ आवाज जो मसलो तो आई कोने न असा थोड़ी दा चोंदा रूबरू आपदा परिन वांगर गाय बुदा असी चोंदा भले ई माना जे कोन मिडे रूह के रुलाए थोरो आए
1: कदी कदी मुखे याद सा यार कंदा कयो आए कदी कदी मुखे याद सा यार कंदा कयो मुझे मन हवाले मां तो मुझे दिल हवाजी दीवाने
0: वाह वाह वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त लख थोरा साईं ये तानी मेहरबानी मौजी समईन ई गायो गालायो आई हाल अहवाल डियो छो त अवां बुधो पिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क के आई GFM 88 रेडियो अवां जी जी शाम केरे कॉल ते हेलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब किथा खां शाहपुर दरपुर खां दरपुर खां ॿुधो पिया अच्छा शाहपुर दरपुर कहिड़ी ज़िले में आहे साईं तालुको मटियारी ऐं ज़िलो बि मटियारी ईअं न महिरबानी लख तारा जुग जुग जीओ सोणा साईं कुर्ब कुर्ब लख तारा ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम خالق لاشاری خوش آئیں چنگو بھلو خیر لگو پہ دعا لگی پی ہے خالق جے کرے آواز تھوڑو بدھن چاہیوں تاں جو تے چھا کو کلام جھنگارے بدھائی نو بدھائے بھلا تھوڑو واہ واہ تھی ونے
2: جی

0: वाह वाह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, साज़ आवाज के साथ में जवान सा गाल जारी है। जलाल चांडियो की सदा बैकग्राउंड में गूंजी पे, आवाज बुध पे जलाल चांडियो साहब जो उस्ताद बुखारी शायरी है। केदी देर करे तैयार अचो ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। केरु साहब ऐं किथां खां जी? जी छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? आवाज़ तव्हांजो कटिजी कटिजी अचे पियो। तव्हां सां कॾहिं बि केरु पियो ॿुधे? अव्हां सां कॾहिं बि केरु पियो ॿुधे बीठा माण्हू?
1: घर में
0: फैमिली ॿुधे पई? ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे।

मेहरबानियूं मेहरबानियूं मिठा माण्हू। जी जी जी अॼु उहो कोन हलंदो, अॼु वरी को ॿियो हले पियो, तव्हां ॿुधी वठो। वालेकुम असलाम, केरु साहब ऐं किथां खां? फ़क़ीर आमिर जिन जी जो ख़ैरु हुजे, कहिड़ा हाल आहिनि फ़क़ीर साईं? जी जी अखियुनि ते आमिर, थोरो तुंहिंजो मिठड़ो आवाज़ ॿुधूं था त पोइ कीअं ॿुधंदासीं। तव्हांजो जे करे आवाज़ ॿुधण चाहियूं त कीअं ॿुधंदासीं? महिरबानी महिरबानी, पोइ थोरो भला गुनगुनाए झुंगारे ॿुधाए सघो था? जी जी, जेको तव्हांखे वणे, तव्हांजी दिलि जी ॻाल्हि जेका वणे।

0: ॾाढी ख़ुशी आहे सर आई थी तव्हां वरी सिहतमंद थी आयो वरी साॻे आब ऐं ताब सां जेको पंहिंजा प्रोग्राम जेको दोस्तनि ताईं पहुचायो पिया अलाह सां ई कंदो त इहो सिलसिलो जेको आहे वरी सारी रहंदो।
1: महिरबानी मोहबतूं मिठा माण्हू लख थोरा
0: दोस्तनि खे जेकॾहिं इजाज़त ॾियो त ॿिनि दोस्तनि
1: जल्दी सां नाला वठी वठो मूंखे कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं वधणो आहे।
0: बिल्कुल कुर्बान अली ख़ासिक अली असांजो दोस्त ॿुधे थो हुन सां गॾु आरज़ू असलम जलालाणी मुंहिंजो फर्ज़ंद आहे ऐं रुस्तम पावर आहे ऐं पंहिंजो अब्दुलरहीम बलोच आहे जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनी खे खोर सारा सलाम
1: लख थोरा लख थोरा कुर्ब साईं कुर्ब। ओके जनाब ब्रेक वठणो आहे कमर्शियल ब्रेक यूनिस बकारी बिना ब्रेक वापसि ईंदो छो त हिकिड़ो हूंदो आहे ब्रेक ॿियो वरी बिना ब्रेक हल्को ब्रेक ॾिबो जॾहिं कोस्टर तिखी थी हलंदी आहिनि हल्को ब्रेक ॾेई कुझु माण्हू लही वेंदा वरी उस्ताद डबल डबल डबल डबल ईअं कंदा आहिनि तीअं वरी बि मुंहिंजे इंजीनियर मूंखे डबल डबल जो काशन ॾींदो मां इजो वापसि थो अचां केॾे न वञो जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क तां शो ॿुधो पिया सिंधड़ी जी
2: अब आप सुनेंगे जीए एफ एम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
5: हाउस ते कब्जे वारी कोशिश भी नाकाम बनाई गई फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 10 खारजी दहशतगर्द मारजी गया दहशतगर्दन की फायरिंग दौरान बिन कस्टम्स ऑफिसर समेत 6 जवान शहीद थिया। सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमनि ते होर पर वज़ीर तरमीमनि जो जाइज़ो वठण लाइ सूबाई वज़ीरनि ते वधल कमेटी जोड़े छॾी सीनियर वज़ीर शचिलना मेमण सूबाई वज़ीर नासिर शाह सईद ख़ानी जाउल सनन जा नजमी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल पर वज़ीर मादरी शाह जी सदारत जो इजलास सूबाई मालियाती एवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ अस्ती कंसल्टेंट मुक़रर इजलास खे मकानी कानून मेयर चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा अख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं पर वज़ीर मुआद अली शाह चयो आहे त मकान
6: सिंध कैबिना बलदियाती निज़ाम में जेको आहे रिफॉर्म्स करणु फ़ैसिलो कयो आहे छा मुशरफ तौर आहे पुराणो निज़ाम बहाल पिया कयसि
7: सूबाई असेंबली ते वक़्तु तयार आहे
6: मुशरफ
7: कहिड़ा मन सुञाण
6: सिक्किम जो प्रेशर आहे तव्हां ते या इस्लामाबाद जो प्रेशर आहे दिल्ली जो प्रेशर आहे कंहिंजो प्रेशर आहे हीउ निज़ाम अचानक एमरजेंसी में मीटिंग छो कॉल कई वई सिंध कैबिना जी ऐं रिफॉर्म कान
7: प्रेशर जेकॾहिं हुजे हा त असां हीअं न ॻाल्हायूं
8: जेकॾहिं कंहिंखे लॻे थो त सिंध में डिवीज़न घटि आहिनि ज़िला घटि आहिनि त हुन ते ॻाल्हि त थी सघे थी न ज़िला ठाहे सघनि था डिवीज़न वधाए सघनि था
9: सिस्टम फेल थी वियो आहे जेको चवे थो त हुनखे महिरबानी करे इस्तीफ़ा ॾियणु खपे जन पोइ सिस्टम में पाण आहियूं
10: बरोच पर सिंधी आहियूं सिंध में रहूं था सिंध सां मरंदासीं सिंध सां
7: हुनखे वधीक एम्पावर करणु खपे ताकी लोकल माण्हुनि जा मसला हल थियनि सीएम साहब कमेटी ठाही आहे सुठी ॻाल्हि आहे मां सम्झां थो त उहो हिकिड़ो पॉज़िटिव कदम आहे ऐं हीअ जेके मसला मसाइल हलनि था सूबे जे हवाले सां पंहिंजे हवाले सां उन जो हल बि हिते निकिरंदो
11: मुशरफ वारो दौर बिल्कुल बहाल नथो थी सघे
12: त जेके चेयरमैन आहिनि या मेयर्स जेके आहिनि उहे कंटिन्यू कंदा जेसिताईं नई इलेक्शन थिए उहो ज़रूरु थियो आहे बाक़ी कुझु जेके अमेंडमेंट आहिनि उहे असेंबली में ईंदियूं स्टैंडिंग कमेटी में वेंदियूं स्टैंडिंग कमेटी जेके रिकमेंडेशन कंदी
5: छा सिंध में अॻोणे अहमद परवेज़ मुशरफ वारो मकानी निज़ाम बहाल थी रहियो आहे केटी न्यूज़ जो सिंध काबिना जे मेंबर ऐं एमपीएस खां सवाल निसार खोड़े चयो आहे त मुशरफ खे नथो सुञाणा सूबे लाइ सिंध असेंबली को बि निज़ाम जोड़े सघे थी कंहिंजो बि दबाउ नाहे निज़ाम जी बहितरी लाइ केर चवे थो त एतराज़ न हुअणु घुर्जे सूबाई वज़ीर सईद ख़ानी चयो आहे त सिंध में को बि पुराणो मकानी निज़ाम न ईंदो मकानी कानून में तरमीमनि जी ॻाल्हि थी रही आहे निज़ाम तब्दील न थींदो सिंध में डिवीज़न या ज़िला वधाइण वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी एमपीए सरदार चांडियो चयो त निज़ाम खे नाकाम छॾींदड़ घरू वज़ीर जी कुर्सीअ ते छो वेठो आहे मोहम्मद कश्मीर चयो त मकानी निज़ाम ते वधीक मुशरत थींदी को बि दबाउ नाहे राजा रज़ाक चयो त निज़ाम तब्दील न पियो थिए सुधारा अचणु घुर्जनि मोहम्मद अली मलकाणी चयो त मुशरफ वारो मकानी निज़ाम न ईंदो सिंध असेंबली में ॿिए ॾींहुं बि नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिट्स बाबति रिथ ते बहस जारी एमकेएम मेंबर जो इंतज़ामी यूनिट ठाहिण जो मुतालबो एमकेएम जे मेंबर इफ्तिखार आलम चयो त इंतज़ामी यूनिटनि जी बहस खे रुगो सियासी नारे तौर न पर इंतज़ामी सुधारनि तौर ॾिसणु घुर्जे इख़्तियार हेठी सतह ताईं मुंतकिल करे अवाम खे बहितर सहूलियतूं फराहम कयूं

0: टीटी एमटीए हसन अली शाह चयो त सिंध विरहाइण जी सोच रखंदड़नि खे वाज़े पैगाम ॾिनो आहे त सिंध जो विरहाङो न थींदो। पीटीआई मेंबर मोहम्मद अवेस चयो त सभिनी खे सिंध जे अवाम जे फैसले जो एतराम करणु घुर्जे, सिंध जो अवाम सिंध जो विरहाङो क़बूल न कंदो।
1: Water is the lifeblood of our region. It sustains millions of lives, nourishes our lands, and secures the very future of our coming generations. It must never be weaponized. It cannot be used as an instrument of coercion, nor can it ever be exploited for political leverage. The treaties governing our shared waters are solemn binding international commitments. They are not matters of political conveniences to be cast aside at your will. They must be honored unconditionally in both letter and spirit.
0: पाणी खेत्र जे माण्हुनि लाइ लाइफ लाइन आहे। पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। पाणी खे सियासी मक़सदनि लाइ हथियार तौर इस्तेमाल कयो वियो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। शिंगाई सहकारी कॉन्फ्रेंस जे सरपाई इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ चयो आहे त आलमी माहिदनि ते रूह मूजिब अमल थियणु घुर्जे। मका दिफ़ाई माहिदो बि कंहिं जे ख़िलाफ़ नाहे। इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश बि ख़िते में अमन जी बहाली लाइ अहम आहे। दहशतगर्दी बि ख़िते खे संगीन ख़तरनि मां हिकु आहे। पाकिस्तान इलाइक़े में चकादार अमन जे क़याम लाइ पुरज़म आहे। ॾखण एशिया मुकमल अमन खां सवाइ तरक़ी वारो हदफ़ हासिल नथो करे सघे।

0: जी नज़र मोहन तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: जी सर, असां कलाम था ॿुधायूं तव्हांखे।
0: कलाम था ॿुधायो? वाह वाह, ॿुधायो।

0: वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त थैंक यू मिठा माण्हू भलीकार भलीकार
1: नमन अशरफ सोलंगी तव्हांजे सलाम ते न्याज़ सोलंगी ऐं ममता सोलंगी
0: महिरबानी लख थोरा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां
2: अदा मां मलिक मोहम्मद बलोच ॻाल्हायां पियो मिठी थरपारकर खां
0: छा हाल आहे बलोच साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो शुक्र अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे मलिक मोहम्मद बलोच अॼु असांजो सेगमेंट आहे गाए ॿुधाइणो कुझु न कुझु भले हिकिड़ी सिट ॿुधायो छा ॿुधाईंदव
2: अच्छा कुझु न कुझु गाए ॿुधायो
0: बिल्कुलु
2: अच्छा साईं

0: तकड़ो तकड़ो तकड़ो तकड़ो
1: साईं बाबू वीरो जो दिलीप कुमार रोस्तम पवार वफा मुनी रहमत सियाल रामचंद मकवाणो मोहम्मद सिद्दीक पारो जेके जो सब गन प्यार सबनी के सलाम खुदा
2: कुर्ब कुर्ब मेहरबानी दस्तासी हाने कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: जी वालेकुम सलाम
2: जी केर साहब पे गलायो
3: नहीं बाबा चांडे तो बना सिटर जे वाला
2: का दादा चांडे साहब केड़े गोठ का
3: टिकर जबल का बाबा चांडे तो बना सही
2: टिकर जबल
3: जी जी
2: यो केड़े जिले में
3: यो सैयद खान कुबो शायद गोडा
2: सैयद खान कुबो में है अच्छा मेहरबानी तहां जो ऐ तवा सा कदी केर पे बुदे
3: बाबा कर के अदनान चांदेवा
2: हां
3: मलता चांदेव दुलकार चांदेव सही खाजिद चांदेव चांदेव
2: जी जी
3: सही रो मौसम चांदेव रो हदी चांदेव
2: जी जी
3: चांदेव
2: जी जी मेहरबानी लख थोरा साईं मेहरबानी मेहरबानी लख थोरा जी जनाब साज़े आवाज़े साथ में यूनुस बकारी साथ शो जो नालो आहे जी हाँ शाम जे कहे ये जेका सिंधड़ी जी शाम आहे उहो आहे अवां जे नाम सिंधड़ी शाम यकीनन सिज जॾहिं लहंदो आहे शाम थींदी आहे कंहिंजी यादुनि जा वराका ईंदा आहिनि के साज़ वॼंदा आहिनि के आवाज़ वॼंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं अखियुनि मां नीर वही पवंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं मुरकूं मोटी ईंदियूं आहिनि कॾहिं कॾहिं टहक गूंजंदा आहिनि पर कहिड़ो माहौल हूंदो आहे ज़ामिन अली उन लाइ छा थो चयो अचे

तव्हां भई किथां खां? लखा ॾिन जोड़े जा, ख़ुशि आयो, ठीकु कयो, चङा भला मतारा जोड़। अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? महिरबानी लख थोरा, भला जे करे चइजे त थोरो ॻाए ॿुधायो त पोइ। हुकुम न, अर्ज़ो आहे, असां ग़रीब हथ अदब जा वधी अर्ज़ था कयूं, त प्लीज़ ॻाए ॿुधाए।

इंशाल्लाह इंशाल्लाह बुधरा ईंदासीं लख थोरा साईं लख थोरा तव्हांजा वालेकुम असलाम महिरबानी साईं महिरबानी ओके जनाब साधे आवाज़ के साथ में यूनुस बकारी साथ निभाईंदड़ तमाम मौजूद दोस्त जेके सजे नेटवर्क शो में शामिल हैं। नेटवर्क शो जो है उन्हें नालो आए सिंधड़ी जी शाम ए सिंधड़ी जी शाम अवां जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क ता बुधो पिया। वालेकुम आला मरी सही कयो चंगा भला वाह वाह वाह वाह वाह वाह माल चारींदे जमड़ाओ जे वाह ते थदी थदी हवाउनि में तार जॾहिं निकिरंदो गुनगुनाईंदो

0: लख थोरा गुलाम रसूल मरी सा मेहरबानी उडसना सी हाने कॉल ते केर अस से गन दिसना सी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचड़ साहब? खुशान चंगू भलो मतारो जोड़ भाउ हाँ अल्लाह भाग इंशाल्लाह। अच्छा भला बियो अज असो मौजू है गाय बुधाए जी जी
1: मुझे दो यो सबसे सदन में।

0: जी जनाब कॉल वठंदा हलंदा सी गरे के दिसना सी कॉल ते केर आ
1: जी केर साहब है किथा का
2: लाडकारी गोठ बाबू से का मुजफ्फर अली से को
0: छाल है मुजफ्फर साहब खुश आयो ठीक आयो
2: अलहमदुलिल्लाह केर लगो पिया
0: लाडकाने जी मौसम की आ साईं हींअर बेहतर आहे मौसम अच्छा अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
2: नानो अब्दुल कादिर
0: जी जी
2: प्रोग्राम बहितर आहे
0: अच्छा साईं चवंदा आहिनि त ॻाइण ऐं रुअण पोइ थी वञे जी जी ॿुधायो
2: तुंहिंजी यादि तुंहिंजी

थैंक यू थैंक यू मेहरबानी लख थोरा डिस्टेंस हाणी कॉल ते के रहलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब कॉल ते की राहे डिसंदासी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी हेलो आवाज अचे पे साईं ओके कॉल कटजी वही है पण मुमताज मौलाई जी आवाज के गजी गजी बुधम पे थी लगे मुखे हुन जे शहरा जी हवा थी लगे न दुआ थी लगे इन ट्रैक सा करो ब्रेक हुंदो बाकी अद कला के साथ हुंदो बिना ब्रेक यूनुस बकारी वापस इंदो जो तो प्रोग्राम है जारी हो सारी नडड़े ब्रेक खबो वापस इंदो यूनुस बकारी के दन में

0: जी जी
1: हेलो
0: ॿुधो पियो भाई जान ॿुधां पियो महिरबानी लख थोरा लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे साईं ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो रब पाक जे रहमतुनि में हुजो आबाद हुजो अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे
1: मूंसां गॾु मुंहिंजो नंढो ज़ेनल आफ़ीन भाकरे पियो ॿुधे मूंसां ॿियो भाउ आहे नासीन वीचारो उहो बि ॾिस ॿुधे पियो मां पाण नासीन आहियां
0: जी जी
1: हा ॿियो मुंहिंजा मामा ॿुधो तव्हां कंबर शहर खां
0: जी जी नाला वठी वेठो नाला हुननि जा खणो
1: जी हा आफ़िज़ अहमद नवाज़ सिंधी और फरहान कोरी तारिक कोरी और ज़ैब कटवर मुंहिंजो नालो पंहिंजो
0: जी जी ज़ैब
1: ज़ैनल आफ़ीन कटवर बिलावल कटवर मुसीब रहमान
0: महिरबानी लख थोरा साईं लख थोरा आमीन आमीन सुम आमीन लख थोरा ओके जनाब ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते असां सां केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम जहिड़ा कहिड़ा आहिनि प्यार दुआ
0: जी अलहमदुलिल्लाह केरु साहब ऐं किथां खां
2: जहिड़ा फलकार खां बरकत वाली फोटो थो ॻाल्हायां
0: जी अदा बरकत लख थोरा मां त गॾु बि केरु पियो ॿुधे महिरबानी लख थोरा ॾिसंदासीं कॉल ते हाणे केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम साईं
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे नज़ीर अहमद मंगरियो साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो
3: अलाह साईं जा एहसान ॿुधायो बिल्कुलु ख़ुशि रहिया पिया
0: अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे अव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे साईं
3: नबी बख़्शूर नंबर बिजरानी आहे
0: जी जी
3: गवान मोहन सबाणी आहे
0: जी जी
3: इरफान फेबो गुलाम हैदर प्रोपोटो जेके सां गॾु ॿुधी रहिया आहिनि सभिनी
0: खे वालेकुम असलाम कहिड़े कुर्ब मिठा माण्हू लख थोरा तव्हांजा अलाह हाफ़िज़ ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब कॉल ते असां सां कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां जी तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे अदा जी जी जी जी जी जी महिरबानी लख थोरा कुर्ब मिठा भाउ मां उमरकोट खां यादि कयो ॾिसंदासीं हाणे केरु पियो ॿुधे हलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम
0: केरु साहब ऐं किथां खां जी गुलाब गुल साहब अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे कुर्ब वालेकुम अस्सलाम ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
6: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां जी गुलाम रहीम बलोच साहब लख थोरा अव्हांजा यादि करण जे लाइ कहिड़ी ख़बर चार जी अलहमदुल्ला तबियत वी आई पी लॻी पई आहे कहिड़े कुर्ब तव्हांजा ख़ुशि जो आबाद हुजो महिरबानी मोहबतूं मिठा माण्हू वालेकुम असलाम कुर्ब साईं लख थोरा ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब ऐं किथां खां जी नालो कोन था ॿुधायो कावड़े आयो नाराज़ हुयो अच्छा ठीकु आहे नाराज़गी आहे त मां तव्हांखे बसि मिंत करे सघंदो कलाम ॿुधाए सघंदो ऐं तव्हांखे तव्हां राज़ी थी वञे ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब ऐं किथां खां जी भुटा भाउ ब्रेक जो टाइम अची वियो आहे तव्हांजी कॉल जूं महिरबानी लख थोर ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिंजो नालो वठो जल्दी जल्दी वठी वठो महिरबानी लख थोर कुर्ब ओके मोज़िस फ़ातिह हज़रत हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे ब्रेक खां पोइ मां ईंदुसि ऐं वरी पोइ अव्हां खां मोकिलाए हलियो वेंदुसि छाकाणि जो 45 वारो ब्रेक सफ़ा शॉर्ट ब्रेक आहे भई जो वापसि

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: आफ़ीस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जी जना वेलकम आखिरी लमात शो जा है नहीं वेलकम भलीकार खुश आमदीद दिसना सीधे कॉल ते के रहलो। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम मामा जी सौदा जदी के मेरानी तो पुराना दोस्त सखर।
2: वालेकुम अस्सलाम मेहरबानी मीरानी साहब खुश आयो ठीक आयो सखर जी मौसम की हां
6: अलहमदुलिल्लाह राके थद पे जी पतरी जी जाती थन हवाई मान सही सदियो सदियो महीनो कन ना देर आए सारे ने
2: जी जी जी हाँ सही सही गाल अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे साईं सर शायरी जो डे कोन्हे गाए ॿुधाइण जो डे
6: आहे
2: को बि तव्हां गाए ॿुधायो तव्हां गुनगुनाए ॿुधायो जी जी जी जी हिकड़ी बस सीट
6: आई सहेड़ो।

0: ॾुखिया सुखिया ॾींहं अहिड़ा गुज़ारे छॾियासीं के नथा विसरनि के विसारे छॾियासीं। रोअण जी आदत त कोन हुई अखिड़ियुनि खे, पर रुनासीं त राज बि रुआड़े
1: छॾियासीं।
0: मुंहिंजी मर्ज़ी कोन हलंदी मिठा माण्हू, वक़्त खां वक़्त ताईं हलणो
1: आहे।
0: ईअं न आहे, ईअं न आहे, ईअं न आहे। कुर्ब कुर्ब कुर्बान कुर्ब थो वञे, कुर्ब कुर्बान थो त कुर्बान वञे, कुर्ब ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो आवाज़ कोन पियो अचे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आवाज़ बिल्कुलु कोन पियो अचे ऐं टाइम बिल्कुलु सफ़ा घटि, इन जे करे मूंखे कॉल मजबूरनि ड्रॉप करणी पए। जॾहिं बि कॉल कयो त प्लीज़ इहो सोचो त कॉल अव्हांजो आवाज़ अचणु घुर्जे। वञण वक़्त थी चुको आहे, पर दर्द जी ॻाल्हि हूंदी आहे त दर्द बणजी दिल अंदर रहंदो न कर ऐं लुड़क बणजी अखियुनि मां वहंदो न कर। हक़ीक़त में जे मिलण नथो चाहीं मूं सां त ख़्वाबनि अंदर मिलंदो न। मिसाल जे विछड़ी वञूं त पोइ छा थींदो, उर्स चांडियो जी सदा में इहे समूरियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर अव्हां जो यूनुस बकारी वञण चाहे थो, का ग़लती गुस्ताखी थी हुजे त माफ़ी जो तलबगार आहे। ईअं न आहे त तो सवाइ जी न सघबो, पर ईअं आहे जीअं तो सां तीअं कंहिं ॿिए सां रही न सघो। वरी उर्दू जे शायर चयो त जब भी चाहो मुझे बुला लो, मैं गया हुआ वक्त नहीं के फिर लौट के ना। चङो यारो यारी मोकिलाए थो अव्हां खां अव्हांजो पंहिंजो यूनुस बकारी इन दुआ सां, जिते बि अव्हां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैरी ख़ैर हुजे। उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमनि जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अव्हां जो मुक़दरु बणजनि। साथ सलामत सिक सलामत असांजो अव्हांजो पाण सभिनी जो, अलाह निगेबान।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध हुकूमत पारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तर्मीमन ते गौर। वडे वजीर तर्मीमन जो जायजो वठण लाइ सूबाई वजीरन ते बदल कमेटी जोड़ी छदी। सीनियर वजीर शजीर इनाम मेहमान सूबाई वजीर आसिफ शाह सईद गनी चालनजार नजमी आलम ए सलीम बलोच कमेटी में शामिल। वडे वजीर मुआद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना जो इजलास। सूबाई मालियाती अवार्ड कमीशन की तैयारी लाइ अशरफ पास्ती कंसल्टेंट मुकर्रर। इजलास के मकानी कानून में तर्मीमन बाबत ब्रीफिंग डींदे बुधाये वो मेयर डिप्टी मेयर चेयरमैन ए वाइस चेयरमैन जा इख्तियार ए जिम्मेवारू वाजे क्यू व्यू। वे वजीर मुआद अली शाह त मकानी इदार के फाल ए जवाबदेह बनाया वो।
2: सिंध काबीना बलदियाती निज़ाम में रिफॉर्म्स करण जो फैसलो किया मुशरफ तौर पुरानो निज़ाम बहाल पे क्यों
3: सूबाई असेंबली जो वक्त चार
2: मुशरफ
3: कड़ा मन सुना
2: सिक्किम जो प्रेशर आते या इस्लामाबाद जो प्रेशर आ दिल्ली जो प्रेशर आ कें जो प्रेशर आ निज़ाम अचानक एमरजेंसी में मीटिंग छो कॉल कई हुई सिंध काबीना की रिफॉर्म्स
3: प्रेशर जैसे न
4: जैसे लगे तो सिंध में डिवीजन्स घटा जिला घटा तो गाली सके ना जिला सजन था डिवीजन्स बढ़ाए सजन था
5: सिस्टम फेल जो चवे तो उनकी इस्तीफा दियण खपे जन उन सिस्टम में पान आन
6: आयो बरोच पर सिंधी आयो सिंध में रहूं था सिंध से मरदे सिंध से
7: जी एम्पावर करण खे ताकि लोकल मान जहा मसला हल थन सीएम साहब कमेटी ठाई आ सुठी गाल समझा तो वो जो पॉजिटिव कदम आके मसला मसायल हलन था सूबे के हवाले से इन हवाले से उनको हल भी इतनी निकलो
8: मुशरफ वो दौर बिल्कुल बहाल
9: नी चेयरमैन या मेयर्स वो कंटिन्यू कदा जिस नई इलेक्शन थे वो जरूर थो बाकी कुछ जो अमेंडमेंट आज वो असेंबली में इंदू स्टैंडिंग कमेटी में वो स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन कदी।
1: सिंध में अगोड़े आमिर परवेज मुशरफ वो मकानी निज़ाम बहाल थी रो है केटीएन न्यूज सिंध काबीना के मेंबर्स एमपीएस का सवाल। निसार खोड़े है मुशरफ के नो सुा सूबे लाए सिंध असेंबली को भी निज़ाम जोड़े सके थी कें जो भी दबाव ना है निज़ाम की बेहतरी लाए केर चवे तो एतराज न हो घुर्जे। सूबाई वजीर सईद गनी है सिंध में को भी पुरानो मकानी निज़ाम न मकानी कानून में तर्मीमन की गाल थी रही है निज़ाम तब्दील नो सिंध में डिवीजन सिया सिला वधायण वाले मामले से गाल बोल थी सके थी। एमपीए सरदार चांडो निज़ाम के नाकाम छदींदड़ घरू वजीर की कुर्सी से छो वेठो है। मोहम्मद बख्श महर मकानी निज़ाम से मुशावत थी को भी दबाव ना है। राजा रजाक निज़ाम तब्दील न पो थिए सुधारा अचान घुर्जन। मोहम्मद अली मरकानी मुशरफ वो मकानी निज़ाम नहीं हो।

0: सुन रहे थे आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज,
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
3: कहता हूँ आए मिलकर पास करते हैं।
4: सिंध सिर्फ एक नक्शा तो नहीं, ये तारीख ही आईनी वहदत है, ये सकाफत है, ये धरती है। साई जी एम सैयद बड़े मुतबर थे, उनका सियासी कद उस वक्त में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम लीग तब बनेगी जब जीएम सैयद मुस्लिम लीग बनेगी, उसमें आए। जो मुहूर्त था 1943 की करारदाद का, जो पाकिस्तान बनाने में जिसका सबसे बड़ा किरदार था वो गदार बना, जिम्मेवार वो था या उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट।
5: सिंध से हमारे हिंदू भाई और मसीह भाई गए, मुझे आज वो बहुत याद है कि काश अगर वो आज इस धरती पर मौजूद होते, मैं देखता कैसे लाहौर का एक बिजनेसमैन खड़े होकर इस मां धरती को तकसीम करने की बात करता है। वो सिंध का हिंदू, वो सिंध का मसीह आज इस मुसलमान के साथ मिलकर उसकी धरती से खींचता उसकी जबान।
6: तो सिंध की जोग्राफिया हदूद है वो वही रहेंगी, बॉर्डर चेंज नहीं हो रहा।
7: यहाँ पर आप कितने सूबे बनाएंगे, 12, 10, 15? सर जो 4 हमारे सूबे हैं उसकी आवाम ने जो अपना वोट डाला था 2024 में, वो तो हक उनको मिला नहीं।
8: थरपारकर को सूबा बनना चाहिए, भाई मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। ना थरपारकर को होना चाहिए ना कराची को सूबा होना चाहिए। मैं तो इस बात से मुत्तफिक हूँ एक गवर्नेंस का बेहतर निजाम होना चाहिए।
9: सिंध असेंबली में नवन सूबा ने इंतजामी यूनिट्स बाबत रिथ ते बेदी भी बहस। सैयद नासिर सेन शाह चयो सिंधड़ी ते सिर केर न दींदो सहंदो केर मयार। सिंध विराईंदे समझी विया हूंदा। अचो गॾिजी सिंधु देश ऐं जिनापुर ख़िलाफ़ करारदाद मंज़ूर कयूं। जिते सूबा ठाहिण जी करारदाद मंज़ूर थी उते भली सूबा ठाहियो। पहिरीं उते तरक़ी थिए, पोइ असांखे अची चवजो त तव्हां तरक़ी खां रहिजी विया। जमील सुमरो चयो त पहिरियां कराची खे वफ़ाक़ जो हिसो बणायो वियो ऐं पाकिस्तान ठाहींदड़ जीएम सैयद खे अवां गद्दार ठाहे छॾियो। सिंध रुगो हिकु नक्शो न पर धरती, तारीख़ी ऐं आइनी वहदत आहे। एमक्यूएम जे मेंबर इफ्तिखार आलम चयो त इंतज़ामी यूनिटनि जी बहस खे रुगो सियासी नारे तौर न पर इंतज़ामी सुधारनि तौर ॾिसण घुर्जे। पीटीआई जे सजाद सुमरो चयो त बस अस्पताल संभाले न सघंदड़ वफ़ाक़ कराची खे पंहिंजे हवाले करण जी ॻाल्हि थो करे। इम्तियाज़ शेख चयो त पाणी ऐं ज़मीन सिंध लाइ रेड लाइन आहिनि। पाणी ऐं ज़मीन जी विच जी ॻाल्हि कई वई त भरपूर मज़ामत कई वेंदी। एमकेएम जे तहा अहमद चयो त पीपल्स पार्टी पंहिंजे मेयर खे बि इख़्तियार न पई ॾिए। आइन जे आर्टिकल 140A ते ॻाल्हाइण ग़लति नाहे। डॉक्टर सोराब सखी चयो त जंहिं तरीक़े सां एमकेएम जे मेम्बरनि ॻाल्हि कई आहे उन मां लॻे थो त हू सिंध जो विरागो नथा चाहिनि। टीपी जे एजाज़ सवाती चयो त हिन्दुस्तान लॾे वियल हिंदू ऐं ईसाई हिते हुजनि हा त सिंध विरहाइण जी ॻाल्हि कंदड़ वापारियुनि जी ज़बान चिके कढनि हा। सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमनि ते गौर। परे वज़ीर तरमीमनि जो जाइज़ो वठण लाइ सूबाई वज़ीरनि ते वधल कमेटी जोड़े छॾी। सीनियर वज़ीर शजील नामेमर, नासिर शाह, सईद खनी, जालंजा, नजमी आलम ऐं सलीम बलोच कमेटी में शामिल। परे वज़ीर महादरी शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। सूबाई मालियाती एवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ती कंसल्टेंट मुक़रर। इजलास खे मकानी कानून में तरमीमनि बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा इख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं। वरी वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदेह बणायो वेंदो।
10: सिंध काबीना बलदियाती निज़ाम में जेको आहे रिफॉर्म्स करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। छा मुशरफ तौर आहे पुराणो निज़ाम बहाल पिया कयो छॾनि?
11: सूबाई असेंबली जो अख़्तियार आहे
10: मुशरफ तौर पारां।
11: मुशरफ कहिड़ा मन सुञाणा?
10: कंहिं जो प्रेशर आहे तव्हां ते, या इस्लामाबाद जो प्रेशर आहे, दिल्ली जो प्रेशर आहे, कंहिंजो प्रेशर आहे? हीउ निज़ाम अचानक एमरजेंसी में मीटिंग छो कॉल कई वई सिंध काबीना जी ऐं रिफॉर्म खणी?
11: प्रेशर जेकॾहिं हुजे हा त असां हीअं न ॻाल्हायूं।
12: जेकॾहिं कंहिंखे लॻे थो त सिंध में डिवीजन घटि आहिनि, ज़िला घटि आहिनि, त हुन ॻाल्हि त थी सघे थी न। ज़िला ठाहे सघनि था, डिवीजन वधाए सघनि था।
13: सिस्टम फेल थी वियो जेको चवे थो त उनखे महिरबानी
14: आहियूं बरोचर, पर सिंधी आहियूं, सिंध में रहूं था, सिंध सां मरंदासीं, सिंध सां जीअं।
15: हुनखे वधीक एम्पावर करणु खपे ताकि लोकल माण्हुनि कमेटी ठाही आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। मां सम्झां थो त उहो हिकिड़ो पॉज़िटिव कदम आहे ऐं हीउ जेके मस्ता मथां मुश्किल सां हिन हवाले सां उन जो हल भी इते निकरंदो
16: मुशरफ वारो दौर बिल्कुल बहाल नथो थी सघे
17: त जेके जीआई जे सजाद सुमरो चयो त बस अस्पताल संभाले न सघंदड़ वफ़ाक कराची के पंहिंजे हवाले करण जी ॻाल्हि थो
18: बाक़ी कुझु जेके अमेंडमेंट आहिनि उहे असेंबली में ईंदियूं स्टैंडिंग कमेटी में वेंदियूं स्टैंडिंग कमेटी जेके रिकमेंडेशन कंदियूं
17: हल कई वई त भरपूर मज़ामत कई वेंदी एम के एम जे तहा अहमद चयो त पीपल्स पार्टी पंहिंजे मेयर खे बि इख़्तियार न पई ॾिए आइन जे आर्टिकल 140A ते ॻाल्हाइण ग़लत न आहे डॉक्टर सोहराब सखी चयो त जंहिं तरीक़े सां एम के एम जे मेम्बरनि ॻाल्हि कई आहे उन मां लॻे थो त हू सिंध जो विरागो नथा चाहिनि पी पी जे एजाज़ सवाती चयो त हिन्दुस्तान लॾे वियल हिंदू ऐं ईसाई हिते हुजनि हा त सिंध विरहाइण जी ॻाल्हि कंदड़ वापारियुनि जी ज़बान चिके कढण में डिवीजन्स या ज़िला वधाइण वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी एम के सरदार चांडियो चयो त सिंध हुकूमत पारां लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीमन कानी निज़ाम ते वधीक मुशावरत थींदी को बि दबाउ नाहे राजा रज़ाक चयो त निज़ाम तब्दील न पियो थिए सुधारा अचण घुर्जनि मोहम्मद अली मलकाणी चयो त मुशरफ वारो मकानी निज़ाम न ईंदो कादरी शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास सूबाई मालियाती एवार्ड कमीशन जी तयारी लाइ अशरफ वास्ती कंसल्टेंट मुक़रर इजलास खे मकानी कानून में तरमीमनि बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त मेयर डिप्टी मेयर चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा इख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़े कयूं वेंदियूं वरी वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मकानी इदारनि खे वधीक फ़ाल ऐं जवाबदेह बणायो वेंदो
19: सिंध काबीना बलदियाती निज़ाम में जेको आहे रिफॉर्म्स करण जो फ़ैसिलो कयो आहे छा मुशरफ तौरु आहे पुराणो निज़ाम बहाल पिया कयो
15: सूबाई असेंबली जो अख़्तियार आहे
19: मुशरफ
15: कहिड़ा मन सुञाणा
19: कंहिं जो प्रेशर आहे तव्हां ते या इस्लामाबाद जो प्रेशर आहे दिल्ली जो प्रेशर आहे कंहिंजो प्रेशर आहे निज़ाम अचानक एमरजेंसी में मीटिंग छो कॉल कई सिंध काबीना जी ऐं रिफॉर्म
15: प्रेशर जेकॾहिं हुजे हा त असां हीअं न ॻाल्हायूं
12: जेकॾहिं कंहिंखे लॻे थो त सिंध में डिवीजन्स घटि आहिनि ज़िला घटि आहिनि त हुन ॻाल्हि त थी सघे थी न ज़िला ठाहे
14: ॾियणु खपे सिंध पर सिंधी आहियूं सिंध में रहूं था सिंध सां मरंदासीं सिंध सां जीअं
15: हुनखे वधीक एम्पावर करणु खपे ताकी लोकल माण्हुनि जा मसला हल थियनि सी एम साहिब कमेटी ठाही आहे सुठी ॻाल्हि आहे ऐं मां सम्झां थो त उहो हिकिड़ो पॉज़िटिव कदम आहे ऐं हीअ जेके मसला मसाइल
17: तरक़ी वारो करे सघे बलूचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 21 दहशतगर्द मारिजी विया भारतीय दहशतगर्द कब्ज़े करण जी बि कोशिश न जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त सिक्योरिटी फोर्सेस 31 अगस्त ऐं 1 सेप्टेम्बर जी विच वारी राति ऑपरेशन कया फोर्सेस कोयटा तफ्तान कौमी शाहरा ते दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कंदे 11 दहशतगर्दनि खे जनम भीड़ो कयो कस्टम्स हाउस ते कब्ज़े वारी कोशिश बि नाकाम बणाई वई फोर्सेस जी जवाबी कार्रवाई में 10 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया दहशतगर्दनि जी फायरिंग दौरान 2 कस्टम्स ऑफिसर्स समेत 6 जवान शहीद थिया

मुल्की राजधानी इस्लामाबाद ऐं पिंडी में बरसाति तबाही मचाए छॾी। घरनि जूं छितियूं किरण जे नतीजे में भॼणा पोत रोड रस्ता तलाउ जो लेख ॾियण लॻा। गाॾियूं मुकमल तौर ते ॿुॾी वयूं। E11 नालो भरी आबादी में दाख़िल। केतिरा ई घर ॿुॾी विया। नाला लही में पाणी जी सतह में ख़तरनाक हद ताईं वाद कोश तलब। हॉल मंडी में ऐं कटारिया में बि सूरत हाल ख़तरनाक बणियल। पिंडी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि ते गाॾियुनि बदिरां ॿेड़ियूं हलण लॻियूं। बरसाती पाणी सबबि रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया। वफ़ाक़ी राजधानी

तालुके सतह ताईं मुंतकिल करण जी हिमायत करे छॾी। सूबे खां ज़िले ऐं तालुके सतह ते फाइनेंस अवार्ड्स खे लाज़मी क़रार ॾियण जो मुतालबो। मोहम्मद नियाज़ मुंडो चयो आहे त इख़्तियारनि जे हेठी सतह ताईं मुंतकिली सां बहितर हुकमरानी क़ाइम थींदी ऐं अवामी मसला हल थींदा।

जिन दोस्तों असा के हिं ट्यून कर उनके वंस अगेन वेलकम भलीकार खुशामदीद चूं था प्रोग्राम दिल की गाल नव खां यारहें वगे ती अवां सां गॾु हूंदो असां अवां खे पंहिंजो कॉलिंग नंबर ॿुधायूं था असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488 हिन ते कॉल करे अवां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि करे सघो था अॼोको जेको असांजो टॉपिक रहंदो अवां सां अवां जे दिलि जी ॻाल्हि करण लाइ ॿुधण लाइ अवां जो तारीफ़ थींदो अवां सां ॻाल्हि ॿोल बि थींदी असांजूं नंढियूं नंढियूं असांजी बि अवां खां फरमाइश हूंदियूं अवां जी फरमाइशूं बि प्रोग्राम में शामिल हूंदियूं अॼोको असांजो टॉपिक आहे त छा शायरी वसीले पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि ॿिए ताईं पहुचाए सघिजे थी ऐं शायरी असांजो मुआशिरे ते कहिड़ो उनजो किरदार आहे शायरी कहिड़ो पंहिंजो अक्ष छॾे थी शायरी जी कंट्रीब्यूशन छा आहे असांजे मुआशिरे में इन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी शायरी आहे छा शायरी जो कंट्रीब्यूशन असांजे मुआशिरे में छा आहे छा शायरी

वधिक मां कोन थो चवां त छा शायरी उहो आउं ॿुधाईंदो त शायरी आहे छा ऐं शायरी जी कंट्रीब्यूशन असांजे मुआशिरे में आहे छा। असांजो अॼोको टॉपिक इहो आहे, बाक़ी हुन खां एंड में असांजो को न को हिकिड़ो मैसेज हूंदो अवां दोस्तनि जे मैसेज ऐं सुठा कोटेशन, उहे मैसेज वसीले बि असांखे अवां उमाणे सघो था, लाइव कॉलिंग ते बि असां सां गॾु फीडबैक ॾेई सघो था। लाइव कॉलिंग जो नंबर मां वंस अगेन रिपीट कंदो हलां, 03000113488, इन ते कॉल करे अवां असां सां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि करे सघो था।

0: हिन ट्रैक सां गॾु वेंदासीं हिकिड़े नंढड़े ब्रेक ते ऐं नंढड़े ब्रेक खां पोइ बैक थींदासीं आवाज़ सां कबीर खोड़ सारी दिलि जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदा रहो GFM 88 नेटवर्क।
1: नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज GFM 88 नेटवर्क।
2: इट्स 9:30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए, आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम।
4: छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
5: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
4: सखर शिकारपुर रोड ते,
5: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
4: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
5: हिकु शानदार ऐं क़ाबिल एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
4: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
5: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा,
4: ऐं कारोबारी मौक़े लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज।
5: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
4: साफ़ मिठो पाणी,
5: बिजली, गैस,
4: 24 कलाक सिक्योरिटी,
5: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
4: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो।
5: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
4: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
5: कॉन्टेक्ट
4: 03009317252
5: एंड 03132757860। हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
4: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब।
5: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
7: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
8: उसी खिते की बनी है आवाज,
7: जीए FM नेटवर्क
8: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: कोन मुड़ंदासीं। असां पंहिंजे नसलनि में, पंहिंजे बचड़नि में पंहिंजो कल्चर, पंहिंजी सकाफ़त इनशाला जीअरे रखण जी कोशिश कंदासीं अव्हां जहिड़नि महबूबनि जे थ्रू। अॼु की असांजे टॉपिक ते मूं चूंड कई आहे, कोशिश कई आहे त टॉपिक अहिड़ो बास रखजे जंहिंजो को आख़िर में को रिज़ल्ट निकिरे। मूं टॉपिक रखियो त शायरी जो कंट्रीब्यूशन छा आहे मुआशिरे में, शायरी जो किरदारु छा आहे, शायरी छा आहे।
1: शायरी हा बिल्कुलु आहे, शायरी उहा आहे, शायरी जेके शायरी मज़ार दर्द रुख ऐं हुन खां पोइ ॼाण मिले थी जो शायरी हूंदी आहे, सिक हिकिड़ी कीअं मिलंदी आहे।
0: अच्छा,
1: शायरी मुंहिंजे सम्झनि उस्ताद जो घर आहे।
0: छा जो घर आहे?
1: उस्ताद जो घर आहे।
0: उस्ताद जो घर आहे, मतिलबु शायरी उस्ताद बि आहे, शायरी घणो कुझु सेखारे बि थी।
1: बिल्कुलु शायरी सेखारे थी ऐं शायर जेके अॼुकल्ह जीअं अब्दुल लतीफ़ भिटे रमत लाल आया ॾिसी
0: जेको
1: कलाम आहे प्ले
0: कंदासीं, लफ़्ज़ बि रिपीट कजो त मां कोशिश कयां थो पंहिंजी प्ले लिस्ट में हिनखे शामिल कयां। किंजर में तुंहिंजी तस्वीर आहे, मां हिन खे सर्च कयां थो, ॻोल्हियां थो। तव्हां तेसीं ताईं थोरो असांजे टॉपिक ते वधीक ॻाल्हि जेकॾहिं करे सघो त इहा पैगाम छा ॾियण चाहींदो, पंहिंजो मैसेज छा ॾियण चाहींदो दोस्तनि सां, कंहिं सां ॻाल्हि ॿोल असांजे प्रोग्राम वसीले।
1: बिल्कुलु दोस्तनि में मुंहिंजो पैगाम इहो आहे त मोहबत विरायो ऐं मोहबत में मज़ो आहे, नफ़रत में कुझु बि लाइ रखियो रहां।
0: बिल्कुलु
1: ऐं मोहबत पायो, मोहबत में वॾो मज़ो आहे ऐं मोहबत में इंसान जेको आहे इंसान जी जेकी सिक चाहत मोहबत में वधंदी आहे ऐं नफ़रत में कुझु मोहबत जो
0: मसरूफ़ियात कहिड़ियूं आहिनि आवाज़ छा कंदा आहियो पहिरां
1: जी
0: आवाज़ जो मसरूफ़ियात छा आहिनि, छा कंदा आहियो, छा कमकार छा आहे?
1: असीं बस पंहिंजो हर को पंहिंजो रोज़ी जा लॻो पियो आहे, पंहिंजी लगड़ी जे हिसाब सां या पंहिंजे हिसाब पंहिंजी मनी ॿारे खां या छोकिरे जे माले जे हिसाब सां पंहिंजी हर को पंहिंजी रिंक जी दवा दवा लॻो पियो
0: आहे। माशाला माशाला,
1: बिल्कुलु तव्हांजो छो तव्हांजे असांजो कोई मखसूस थिए थो या सॼो
0: छा पियो थिए पहिरां
1: न त पोइ मिलाए थो तव्हांजे लहिजे मां, पर तव्हांखे छा महसूसु थिए थो?
0: असांखे तमामु इंतिहाई अवां मुंहिंजा प्यार जी जेका त वास अची रही आहे, मोहबती माण्हू आहियो, जस हिकिड़ो इहो हेलो हाय जो ज़रियो आहे त को न को ज़ाहिर आहे इंसान जो कमकार हूंदो आहे। मौला सभिनी
1: असां नंढा माण्हू आहियूं, रुची आहे नंढा माण्हू खां असां रुजे जी दुनिया
0: मुंहिंजो प्रोग्राम जेको दिलि जी ॻाल्हि आहे अॼु हुन जी हिते स्टार्टिंग आहे, इब्तिदा आहे हिन में FM 88 ते। जी जी, मुंहिंजो पहिरियों प्रोग्राम आहे। अवां जो जेकॾहिं तावन ऐं साथ रहियो, मोहबत रहियूं त पोइ इनशाला असांजो रेगुलर आहे हूअं बि ऐं अञा कंटिन्यू रखंदासीं। हिन खे 9 खां 11 वॻे ताईं आहे मुंहिंजा भाउ।
1: बिल्कुलु तव्हांजो अचानक आवाज़ ॿुधोसीं,
0: सलाम को नियापो कंहिं दोस्त खे ॾियणु चाहियो त वरी तव्हां जो असां जेको आहे कोशिशि कयूं त ट्रेक बि प्ले कयूं।
1: कलाम ज़रूरु ॿुधाइजो असांखे,
0: बिल्कुलु कोशिशि हूंदी असांजी।
1: दोस्त जेके
0: लव यू, थैंक यू, वॾी महिरबानी। जी दोस्त जी फरमाइश असां पूरी करण जी कोशिशि कंदासीं, मां कॉल नंबर वरी रिपीट कंदुमि त छा करणु आहे, हिकु दफ़ा कॉल अटेंड कंदासीं।

0: हिकड़ी सा कॉल रिसीव करदासे कॉल खा पो असा ब्रेक ते वेंदासे आ ब्रेक खा पो असा दोस्त जी फरमाइश पूरी करदासे अस्सलाम वालेकुम
1: साईं किथा का वालेकुम सलाम
0: प्रोग्राम दिल जी गाल में वेलकम बलिगार खुश आमदीद बेरा
1: मसाज ग्रीन गाल सखर
0: मा सखर मा केर पे गरायो सुना
1: साईदाद ब्रोही
0: साईदाद ब्रोही
1: जी जी
0: साईदाद ब्रोही प्रोग्राम के ऊपर के दिल जी गाल टॉपिक भी रखो याद हो रिपीट शायरी मुआशरे से कड़ो असर आशरे से कड़ो किरदार आती तो नज़म भी पढ़ो दिल की गाल कई अमां दिल की गाल असाई
1: शायरी मतलब इंसान जी कुछ समझाए तो
0: पर फर्म फजीलत वाली शायरी भी हो जाए ना अजकल मुआशरे में तुम बुध रहा हो तो शायरी अड़ी भी तो न हो जाए ना मुआशरे में बिगाड़ आने कुछ की तुम नजर में अड़ा भी गुजरिया हूं जी धमकी धमान दड़का दाबान शायरी को मैसेज हो क्या बात है लव यू कह मुझा भा कचू सिरा उन पको न कंदा
1: ना
0: पकियो केर कंदो कचू कंदा कचिन मुझा भा कचिन सिरन के तर कयो तो कदें अच्छा वरी बाय में विदा असा की को हुकुम अवा जो को पैगाम को न्यापो
1: पैगाम
0: जी क्या जी
1: नंबर
0: नंबर तो तहां के याद आ मुझे बुधायण खा अग में बिल्कुल लगी वो दिल से जैसे याद कौ तो थोड़ा घो इंतजार भी कौ इन बहाने से प्रोग्राम भी बुधा रो प्रोग्राम बुधा रहो ब्रेक से वेंदे ब्रेक का खूबसूरत ट्रैक प्ले कर वही प्यारा लव यू लक लाइक

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
0: आप
3: चाकुन सां हमलो करे ॾिनो। नतीजे में बैंक ऑफ अमेरिका जी 32 वर्षनि जी नायब सदर एरन प्यासन थी मारजी वई। आउजरियुनि जी औरत जे शख़्स चाकू 4 मिंटनि ताईं चाकू फिटा करण लाइ चयो, पर हुन इनकार कयो। पुलिस अहलकारनि ॾांहुं चाकू खणी वधी जवाबदार औरत खे काबू करण जी कोशिश नाकाम थी। टाइम्स स्क्वायर ते चाकू बरदार औरत जे हमले में बैंक ऑफ अमेरिका जी नायब सदर मारजी वई। टाइम्स स्क्वायर ते हिकु औरत ॿिन माण्हुनि ते चाकुनि सां हमलो करे ॾिनो। नतीजे में बैंक ऑफ अमेरिका जी 32 वर्षनि जी नायब सदर एरन प्यासन थी मारजी वई। अमरीकी मीडिया मूजिब 49 वरियनि जी औरत पहिरियां 68 वरियनि जे शख़्स ते चाकू सां हमलो कयो, जंहिंखां पोइ हिन एरन प्यासन थी खे पिण चाकू हयो। पुलिस अहलकारनि जवाबदार औरत खे लॻभॻ 4 मिंटनि ताईं चाकू फिटा करण लाइ चयो, पर हुन इनकार कयो। पुलिस अहलकारनि ॾांहुं चाकू खणी वधी जवाबदार औरत खे काबू करण जी कोशिश नाकाम थियण खां पोइ पुलिस फायरिंग करे खेसि मारे छॾियो।